मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। प्रातः वंदन के साथ प्रातःकालीन सभा आरंभ करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा

0: अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना

आइए सबसे पहले प्रणाम करें अपने वतन की पावन माटी को। सब कुछ इसी मिट्टी से पैदा हुआ और सभी कुछ इसी मिट्टी में समाहित हो जाता है, परंतु अपनी मातृभूमि के प्रति किए गए

मातृभूमि की वंदना के बाद अब स्मरण परमपिता परमेश्वर का। हरि नाम का संकीर्तन ईश्वरीय ध्वनि का एक आध्यात्मिक रूप है। ये न केवल हमारी इंद्रियों को सुख देता है, बल्कि हमारे अंतःकरण को प्रबल शक्ति से संपन्न करता है।

हमारी श्रद्धा में जब ईश्वर के प्रति विश्वास का बल समाहित हो जाता है तो हमारे कर्म परोपकार की दिशा में स्वतः आगे बढ़ने लगते हैं और हमारा मन उन्हीं कामों को

संसार के समस्त धर्म मानव के कर्तव्य पालन की रूपरेखा हैं। यही वो सार्वभौमिक नियम हैं जिन पर चलकर मनुष्य महामानव बन सकता है। संत जन जीवन भर ईश्वर के दिए भोजन और श्वास के बदले दुनिया के लिए वह मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है और जगत का कल्याण भी।

अगर कोई ये समझे कि अमुक उपलब्धि उसने स्वयं अर्जित की है तो ये उसकी कमजोरी है। जीवन में हम वही कुछ कर पाते हैं जिसे कराने के लिए ईश्वर हमें योग्य समझता है। हरी कृपा के बिना हमें श्वास भी नहीं मिलती, तो हमारी उपलब्धि उससे अलग कैसे हो सकती है।

0: आज की वंदना में अपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद अनूप जलोटा, सीताराम सिंह, कमल हंसपाल और नंदिनी शरण की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: नसंसनी नसंसनी नसंसनी ना उत्तेजना ना उत्तेजना नशोर दिन रात नशोर दिन रात नशोर दिन रात ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी अनूप जलोटा के स्वर में।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्रृंखलित श्री रामचरित मानस गान की आज की ये कड़ी। आकाशवाणी भोपाल से चिंतन के अंतर्गत

0: लीजिए अब सुनिए ज्योतिष की उपयोगिता, इस विषय पर डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती का आलेख।
1: कई बार मन में प्रश्न उठता है, जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता क्या हो सकती है। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के तीन भेद माने गए हैं। संचित कर्म यानी व्यक्ति द्वारा वर्तमान क्षण तक जन्म जन्मांतरों में इस जन्म में भी किया गया कर्म। प्रारब्ध यानी संचित कर्म का वह भाग जिसका भोगना प्रारंभ हो गया है। और क्रियमाण यानी वो काम जो अभी हो रहा है या किया जा रहा है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कर्म अर्थात संस्कार, व्यक्ति या जातक के सुख दुख हानि लाभ उन्नति अवनति आदि का निर्धारण करते हैं। इसलिए समय समय पर ग्रहों की स्थिति के अनुरूप व्यक्ति के संचित संस्कारों में से सात्विक रजोमय तमोमय संस्कार के फल प्रारब्ध के रूप में देखने को मिलेंगे। यदि ग्रह स्थिति अच्छी है तो संचित कर्मों में से अच्छे कर्मों का फल प्रारब्ध में मिलेगा। मान लो ग्रह स्थिति के अनुसार जातक को दान से रोटी रोजी और घर प्राप्ति का योग है तो उसके संचित कर्म निर्धारित करेंगे कि दान ससम्मान मिलेगा या भीख के रूप में। इस संबंध में एक प्रकरण ध्यान देने योग्य है। जुड़वां बच्चों में से एक आगे चलकर राजपुरोहित बना, उसे अपनी विद्वत्ता के आधार पर राज्य से ससम्मान रोजी रोटी और भवन मिला, जबकि दूसरा भिखारी बन गया, उसे भी भगवान के नाम पर दयावश दान मिलने लगा और शासन ने उसकी विपन्नता के आधार पर उसको झोपड़ी दे दी। स्पष्ट है इन जुड़वां बच्चों के भाग्यों का अंतर उनके संचित कर्मों के कारण से है। अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों एक ही समय तिथि और स्थान पर जन्मे व्यक्तियों में से एक प्रतिमास केवल हजारों में कमाता है, दूसरा लाखों में और तीसरा करोड़ों में। कर्मों का अर्जन सदा होता रहता है। पूर्व संचित कर्म वर्तमान में किए जा रहे क्रियमाण कर्मों के द्वारा प्रभावित होते हैं। व्यक्ति वर्तमान में जो अच्छे या बुरे काम कर रहा है उनसे उत्पन्न संस्कार पूर्व में संचित संस्कारों से जुड़कर उन्हें प्रभावित करते हैं। अच्छे परिवेश में किए जाने वाले सत्कर्मों से सुसंस्कारों में वृद्धि होती है। फलस्वरूप क्रियमाण कर्म जातक के संचित कर्मों को प्रभावित कर उसके प्रारब्ध में भी कमोवेश परिवर्तन ला देते हैं। क्रियमाण कर्म जातक की जीवन नौका में पतवार का काम करते हैं। भारतीय ज्योतिष के लौकिक पक्ष की मान्यता है कि ग्रह किसी को सुख या दुख नहीं देते, बल्कि आने वाले सुख दुख की सूचना देते हैं और हमारी जन्मपत्री हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों की मूर्तिमान प्रतिलिपि या पूर्व जन्मों के कर्मों को जानने की कुंजी है। अतः ज्योतिष की जीवन में प्रमुख उपयोगिता यही हो सकती है कि ग्रहों के स्वभाव और गुणों द्वारा अपने भावी सुख दुख का पूर्वानुमान कर हम अपने क्रियमाण कर्म के सहारे आगामी दुख को सुख में परिणत करने का प्रयत्न कर सकें।
0: ज्योतिष की उपयोगिता, इस विषय पर अभी आपने सुना डॉक्टर पुरुषोत्तम चक्रवर्ती का आलेख। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कृषक मित्रों के लिए आज की कृषि चर्चा। विषय है खरीफ फसलों की तैयारी के लिए जरूरी कृषि कार्य। वार्ताकार डॉक्टर दिलीप जाट।
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की कृषि चर्चा का हमारा विषय

0: है खरीफ फसलों की तैयारी के लिए जरूरी उन्नत कृषि यंत्र। तो खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अगर हम यंत्रों की बात करें तो यंत्रों का महत्व से हम अगर शुरुआत करें कि क्या महत्व है यंत्रों का, तो यंत्रों के उपयोग से सामान्यतः एक तो सारा कार्य हमारा समय पर होता है। समय पर होने के साथ ही साथ जो काम हम कर रहे हैं उन वो एक समान रूप से होता है। जैसे कि अगर हमने भूमि को एक जैसा तैयार, समतल और एक जैसा तैयार किया है, तो उसके बाद उसमें अगर हम बुआई करेंगे तो वो एक समान रूप से बुआई होगी। उसके बाद हम जितने भी कृषि यंत्र है, जितने भी कृषि कार्य उसमें करेंगे, उनमें एक रूपता रहेगी, तो उससे हमारी फसल एक समान रूप से पूरे खेत में उगेगी। उससे हमें एक जैसी यील्ड प्राप्त होगी, उपज एक जैसी प्राप्त होगी। तो इन सब कार्य के लिए यंत्रों का काफ़ी योगदान है। श्रम की बचत हो रही है, साथ ही हमें समय की बचत हो रही है। जैसे कि आपने पुराने समय में देखा है कि जब हमारे पास ये उन्नत कृषि यंत्र नहीं हुआ करते थे, तो किसान भाइयों के पास अगर रकबा काफ़ी अधिक होता था खेती का, तो उसमें वो पूरे खेत, पूरे क्षेत्र में वो खेती भी नहीं कर पाता था। तो इन यंत्रों के इस्तेमाल से ये फ़ायदा हुआ है कि आज वो अपने पूरे जितना भी खेती का रकबा है उनमें खेती कर पा रहा है, वो अधिक उपज प्राप्त कर पा रहा है, इससे उत्पादन काफ़ी अधिक प्राप्त हुआ है। साथ ही अगर हम और यंत्रों की बात करेंगे, जैसे अभी खरीफ फसलों की तैयारी का समय है, तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा यंत्र इस्तेमाल में लाया जाए, तो एक होता है गहरी जुताई। अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगली फसल जो भी आप लेंगे उसमें खरपतवार की संख्या में कमी आएगी। साथ ही साथ जो आप 3 या 4 साल से एक समान फसल जब लेते जा रहे हैं, तो उसकी ऊपरी जो सतह है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और जैसे ही आप गहरी जुताई करेंगे, नीचे की मिट्टी जब पलट के ऊपर आएगी, तो उसमें कुछ मात्रा आपकी न्यूट्रिएंट की भी बढ़ी हुई मिलेगी, साथ ही साथ खरपतवार पर नियंत्रण होगा। तो ये गहरी जुताई करने के लिए आप मोल्डबोर्ड प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्डबोर्ड, कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर उसमें जड़ें हैं खेतों में पौधों की, और या पत्थर पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ पे आप चाहें तो डिस्क प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क प्लाव जो है, जहाँ मोल्डबोर्ड प्लाव इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, वहाँ पर ये यंत्र इस्तेमाल में आएगा। इसके बाद अलग अलग तकनीकें होती है, प्राथमिक जुताई होती है, द्वितीयक जुताई होती है। जब भी आप पिछली फसल लेने के बाद पहली बार खेतों को आप जब तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो भी यंत्र इस्तेमाल में आते हैं वो प्राथमिक जुताई यंत्र होते हैं। ये यंत्र सामान्यतः 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई में चलाए जाते हैं। इसके लिए मोल्डबोर्ड प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिस्क प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन यंत्रों के इस्तेमाल के बाद अब जो आपकी ज़मीन जो है वो खेती योग्य अभी नहीं हुई है, उसको पुनः भुरभुरा बनाने के लिए अब जो अगले यंत्र इस्तेमाल में आएंगे उनको हम द्वितीयक जुताई यंत्र बोलते हैं। उसके लिए आप कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिस्क हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रोटावेटर है, तो जो काम आप कल्टीवेटर से 2 या 3 बार में कर पा रहे हैं, वो रोटावेटर से आप एक बार में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप द्वितीयक जुताई के लिए रोटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारी खेती जो है वो फसल बोने के लिए एकदम तैयार रहेगी, परंतु अगर कोई किसान भाई रेस्ट बेड तकनीक के माध्यम से अगर खेती करना चाह रहा है, तो उसके लिए रेस्ट बेड यंत्र भी उपलब्ध है। साथ ही बुआई के समय ही अगर वो बेड बनाना चाहे, तो रेस्ट बेड कम प्लांटर भी, सीड ड्रिल कम प्लांटर और इस प्रकार के यंत्र हैं, उनका इस्तेमाल करके वो बेड भी बना सकते हैं, और बेड बनाने के साथ साथ उसमें बुआई भी की जा सकती है। सोयाबीन की, जैसे खरीफ फसलों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो सोयाबीन की अगर आप बुआई करना है, उसमें रिज एंड फरो तकनीक के माध्यम से, जहाँ की एक फरो बनेगी, एक रिज बनेगी, एक कतारी में आप फसल लगाएंगे और एक कतारी आपकी फरो रहेगी उसके बीच में, जिससे कि जल की निकासी अच्छी होगी, साथ ही पौधों को हवा अच्छी मिलेगी जड़ों को, जिससे कि पौधों का विकास अच्छा होता है। तो इसके लिए रिज फरो तकनीक आधारित मशीनें भी उपलब्ध है, जिनसे बुआई कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा और भी ऐसी है, जैसे कई बार आपने यंत्रों का इस्तेमाल आप लंबे समय तक खेतों में करते हैं, तो ज़मीन के नीचे की सतह काफ़ी कठोर हो जाती है, तो उस कठोर सतह को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए भी आप कुछ चीजल प्लाव या आप मोल प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल प्लाव के इस्तेमाल से अगर आप ज़मीन में 4 से 5 मीटर की दूरी पर मोल प्लाव से हार्ड पान को ब्रेक करेंगे, जो कि 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर गहराई तक ऑपरेट होता है, जिससे कि जल जो है वो निकाल, उसमें भराव नहीं रहेगा, वो सतह से थोड़ा नीचा चला जाएगा। और खास करके सोयाबीन और इस तरह की फसलें हैं जिनमें कि अगर जल भराव अधिक होता है, तो ये फसलें लंबे समय अच्छी उपज नहीं दे पाएगी। अगर 5 या 6 दिन तक जल भराव रहेगा खेत में, तो फसल खराब भी हो सकती है। तो पहले ही अगर हम इन यंत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, धन्यवाद।
1: खरीफ फसलों की तैयारी के लिए जरूरी कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलीप जाट। इसी के साथ कृषि चर्चा अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है एक अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
3: BSF की सीमा सुरक्षा की

0: कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापार नेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानाम् एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
0: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटरी

0: अग्निवीर सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। सात बजकर 7:20 पर दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सप्रे संग्रहालय के संचालक विजय दत्त श्रीधर से खास बातचीत। राष्ट्रीय महिला आयोग और निर्भया फाउंडेशन भोपाल द्वारा विवाह पूर्व संवाद केंद्र पर जानकारी, संस्था अध्यक्ष समर खान से और ऑपरेशन सिंदूर पर बनी पेंटिंग पर ग्रैंड अवार्ड जीतने वाले कलाकार रविंद्र राय से खास मुलाकात।

फिल्म संगीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम सुरुमई सवेरा सुनिएगा 8:30 पर और गीत सागर 10:05 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर आज आप सुनेंगे रामदीन कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। लॉटरी खुल गई, ये झलकी सुनवाई जाएगी 9:30 पर, जिसके लेखक है अशोक बुलानी और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। नौ बजकर 45 मिनट पर फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुन सकते हैं पुतुर देवदास जोशी का वायलिन पर बजाया राग तूड़ी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आरंभ होगा 11 बजे से और आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। पत्रों पर आधारित श्रोताओं का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है रेडियो धारावाहिक सिजकिया, आज इसकी 4th कड़ी प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी के रीवा केंद्र के योगदान से दिन में 1 बजे सुनिए महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत 1:45 पर और शाम 5:02 पर होगा कार्यक्रम युववाणी। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 2 बजे। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से, फिल्म संगीत सुन सकते हैं 5:33 पर और रात 8:15 पर। शाम 6 बजे प्रसारित करेंगे भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा, इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत।

0: आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा का समय है 7:21 का और 7:45 पर सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 पुनः जुड़कर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों में रात 9:30 पर युवा भारती और 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग

0: वांग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईडी भी बनाई जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत।

0: स्वागत है। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
1: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
0: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंडतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौ माताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मंगल कामनाओं के साथ मैं विवेक का हर स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। श्रोताओं, हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं और ये हम सिर्फ तभी हासिल कर पाते हैं जब हम कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक का सपना सिर्फ सोचने भर से थोड़ी पूरा होता है। कोशिश यानी बार बार गिरकर भी उठना, हार के बाद भी आगे बढ़ना और ख़ुद पर भरोसा बनाए रखना। अक्सर हम एक दो बार असफल होते हैं और रुक जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम सफलता उन्हीं के पास जाती है जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे में हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी के पीछे सैकड़ों छोटी छोटी कोशिशें छुपी होती हैं। ऐसे में हमको काफ़ी सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो अगर मानिए कि अगर आपके पास कोई मौका आता है और आपको कोशिश करने का मौका मिलता है, तो उस कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो ख़ुद को एक मौका देना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश छोड़ देते हैं वो जीतने का मौका भी खुद ही खो देते हैं।

0: विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं आप दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देश विदेश, राज्य, शहर हो या गांव, सबकी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए समाचार पत्रों से।
1: इस बार देश में 11 साल में सबसे कम कमजोर मॉनसून रहने का अनुमान। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। विभाग का कहना है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस साल मॉनसून पिछले 11 वर्षों में सबसे कमजोर रह सकता है। विभाग ने अपने दूसरे पूर्व अनुमान में जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। और वहीं सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीटी पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। अदालत ने हालांकि शिक्षकों और राज्यों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए टीटी पास करने की समय सीमा को 2 वर्षों से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और वहीं सरकार ने तेल कंपनियों को 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक रखने के निर्देश दिए। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारण बढ़ाने का काम कर रही है। और वहीं आरसीबी और टाइटंस के बीच होगा फाइनल। आईपीएल 2026 का फाइनल गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में जगह बना ली है। और वहीं आयुष्मान में दुर्घटना से लेकर बर्न कीस तक के पैकेज बदले, इलाज की डिजिटल निगरानी होगी। आयुष्मान भारत योजना में अब इलाज सिर्फ कागजी रिकॉर्ड के आधार पर नहीं चलेगा। मरीज कब अस्पताल पहुंचा, हालत कितनी गंभीर थी, कौन कौन सी जांच हुई, इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में नया पैकेज सिस्टम लागू किया है, जिससे इलाज के नियम, पैकेज और मॉनिटरिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। और वहीं कक्षा 5वीं से 8वीं की पुनः परीक्षा 16 जून से, नई समय सारणी जारी की गई। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। नई समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक होंगी। 24-28 जून के बीच उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि पुनः परीक्षा से जुड़े अन्य सभी पूर्व निर्देश यथावत लागू रहेंगे। श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों से सुर्खियां। आप सभी के लिए इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: ज्ञान सूचना जानकारी और मनोरंजन के संग आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप विवेक कहार के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी समाचार पत्र यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में और बताएंगे आपको विवाह पूर्व संवाद केंद्र की बारे में कि वो किस तरीके से लोगों को काउंसलिंग दे रहा है और साथ ही हम बात करेंगे ललित अकादमी द्वारा ग्रैंड प्राइज अवार्ड से नवाजे जाने वाले भोपाल के कलाकार रविंद्र रॉय से। श्रोताओं, राष्ट्रीय महिला आयोग और निर्भया फाउंडेशन भोपाल द्वारा विवाह पूर्व संवाद केंद्र चलाया जा रहा है। ये कैसे काम करता है और यहाँ पर कैसी क्या काउंसलिंग की जाती है, इसके बारे में हमने बातचीत की है संस्था की निदेशक समर खान से।
1: देखिए, कहा जाता है कि जोड़ियां आसमान पर बनती हैं।

0: है, लेकिन रिश्तों की मजबूती जो है वो धरती पर आपसी समझ, संवाद और सम्मान से ही बनता है। और इसी का बहुत अच्छा उदाहरण जो है आप कह सकते हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर है तेरे मेरे सपने, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विवाह से पहले होने वाले युवक युवतियों के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक मंच प्रदान करना है, जहाँ विवाह, परिवार, जिम्मेदारी, भविष्य की योजनाएं, संवाद, आर्थिक प्रबंधन, स्वास्थ्य, आपसी अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा कर सकें। ये केवल युवाओं की सोच समझ और जागरूक निर्णय लेने में ही सहायता नहीं करता, हम परिवार के साथ भी संवाद करते हैं।
1: जी मैम, ख़ास तौर से ये भोपाल में चलाया जा रहा है, तो अगर किसी को प्री काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है?
0: सर देखिए, निर्भया फाउंडेशन बहुत पहले से भोपाल में और मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, तो आप कई तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसका हमने प्रचार प्रसार भी कई बार कर चुके हैं हम लोग। इसके अलावा राज्य महिला आयोग, क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक इनिशिएटिव है, राज्य महिला आयोग भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, महिला बाल विकास भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं क्योंकि उसमें वो भी इसका एक पार्ट है, तो वहाँ से भी इसकी जानकारी मिल जाती है कि इस तरह के केंद्र संचालित हैं, तो युवा जो है वो हम तक आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने खुद एक कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे हमने बहुत सारे मैरिज गार्डन्स वाले, बहुत सारे कैटरिंग्स वाले और बहुत सारी ब्यूटिशंस, और इसके अलावा हमने जितने भी धर्म गुरु हैं हमने उन सभी के लिए एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था जब हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। और हमने उन सबसे यही अपील की थी कि जो भी आपके, क्योंकि देखिए कपल्स शादी से पहले, कपल्स या कपल्स का परिवार इन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो हमने उनसे ये अपील की थी कि जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आए तो आप उनको ये भी सजेस्ट करो कि विवाह से पूर्व वो हमारे सेंटर पे आए और एक संवाद करें।
1: मैम, कोई नंबर हो यदि आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें?
0: देखिए मैं आपको दो संपर्क नंबर उपलब्ध करा देती हूँ, 9424857 36, दूसरा नंबर है 7987062702।
1: कि ये निशुल्क है या फिर इसका कोई चार्जेस होते हैं, और समय क्या रहता है इसका?
0: नहीं देखिए, इसके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, ये पूरी तरह से निशुल्क है, और इसमें समय सीमा यह है कि 45 मिनट का एक सेशन होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पूरा 1 आवर इसमें चला जाता है, क्योंकि पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर कुछ फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, तो टाइम टेकिंग तो ये रहता है, 1 आवर पूरा इसमें लगता है। और हमको आगे, हम इसको 2-3 सिटिंग्स लोग लेते हैं, अभी कंटिन्यूटी थोड़ी सी लोगों में कम है, मैं देख रही हूँ कि एक बार आने के बाद बहुत ही कम कपल्स जो है वो रिपीट करते हैं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, और इवन पेरेंट्स भी बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ तक।
1: राष्ट्रीय महिला आयोग और निर्भया फाउंडेशन भोपाल द्वारा चलाए जा रहे विवाह पूर्व संवाद केंद्र के ऊपर ये जानकारी आप सुन रहे थे संस्था के निदेशक समर खान से। इसी के साथ तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म ताल से। आवाज़ है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: मीडियम वेव 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है अगली जानकारी का। आज पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, क्या है इससे जुड़ी कहानी और इसके बारे में क्या इतिहास है, इसके बारे में हमने और अधिक बातचीत की है सप्रे संग्रहालय के संचालक विजय दत्त श्रीधर जी से।
1: हिंदी पत्रकारिता के जनक युगल किशोर शुक्ल हैं। कोलकाता से 30 मई 1826 को शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। उदंत मार्तंड का मतलब होता है समाचार सूर्य, और उन्होंने प्रवेशांक में जो अपनी उद्घोषणा की थी वो था कि ये हिंदुस्तानियों के हित के हेत। तो ये हिंदी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। तो वक्त बदलेगा, वक्त के तगाजे बदलेंगे, लेकिन पत्रकारिता का गुण धर्म मर्म सब यही है, हिंदुस्तानियों के हित जो समाज के हित में है वही पत्रकारिता है। ये जनवरी 1931 तक ये माना जाता था कि काशी का बनारस अखबार ये 1845 में निकला था, ये हिंदी का पहला अखबार है। लेकिन एक शोध अध्येता ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को खंगाल रहे थे, राजा राधाकांत देव की निजी पुस्तकालय में उन्हें एक फाइल मिली, उसमें उदंत मार्तंड के अंक मिले कुछ। पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने उसके आधार पर विशाल भारत जो बनारस चतुर्वेदी से संपादक थे उसमें 4 लेख लिखे, एक सीरीज, फरवरी 1931, मार्च 1931, अप्रैल 1931 और मई 1931। तो इसके बाद हिंदी जगत को पता चला कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो बनारस अखबार से 19 साल पहले प्रकाशित हो चुका था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, 14 जुलाई 1924 तो रायगढ़, महाराष्ट्र का रायगढ़ मतलब जहाँ शिवाजी महाराज राजधानी थी, वहाँ की उपनगरीय क्षेत्र में एक नारायण सुर्वे करके, पद्मश्री नारायण सुर्वे, मराठी के बड़े नामवर कवि, लोकप्रिय कवि, वो अपनी बेटी के यहाँ रहने चले गए थे। अब वो लोग, बेटी कहीं गई होगी बाहर, घर में ताला लगा था, उनके घर में चोरी हो गई।

0: चोर ने दूसरे फिर क्या कहते हैं, वो रेखी करते हैं, तो फिर रेखी घर उन्होंने कहा कोई हलचल नहीं हुई, इसका मतलब आज और जो बचा माल है वो आज पार कर रहे हैं। फिर गया वो, लाइट भी जला ली, फिर उसने देखा क्या है फ्रिज में, वो खा ले, तो जो मिला वो खा गया। एक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी तो वहाँ नारायण कविवर नारायण सुर्वे उनकी पद्मश्री का वो लगा हुआ था, उसकी प्रशस्ति लगी हुई थी। उसने नाम वो पढ़ा, नाम वो नाम पढ़ने के बाद उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, गिलानी हुई फिर से। उसने एक माफीनामा लिखा, उसने दूसरे दिन को सामान नहीं चुराया, उसके दूसरे जो चोरी किया था वो सामान वापस ला के रखा, और एक माफीनामा लिखा। वो लिखा उसने, यदि मुझे पता होता कि कवि का घर है तो मैं चोरी नहीं करता। अपने भाषा और अपने साहित्यकारों के प्रति प्रेम का कैसा दुर्लभ उदाहरण है। हम लोगों को हिंदी पत्रकार दिवस पर कामना करना चाहिए कि हिंदी वाले लोग पढ़ने की आदत डालें, साहित्य पढ़ें, पत्रकारिता की किताबें पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, पत्रिकाएँ पढ़ें, लेकिन खरीद कर पढ़ें और अपनी भाषा के प्रति इतना प्रेम करें कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ अंग्रेजी का या फ्रेंच का या जर्मन जापानी जो करना उसका प्रयोग करें, लेकिन अपनी मातृभाषा, क्योंकि वो अपनी हमारी संस्कृति की परिचायक होती है, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक होती है और इसका बहुत बड़ा माध्यम पत्रकारिता होती है। तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हों, हम अपने साहित्य के साथ खड़े हों, हम अपनी भाषा के साथ खड़े हों।
1: हिंदी समाचार पत्रों का इतिहास कितना सादावृत है, तो यह हमको इस बातचीत से पता लगता है। श्रोताओं, ये जानकारी हमें दे रहे थे सप्रे संग्रहालय के संचालक विजय दत्त श्रीधर जी। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म दम लगा के हईशा से। आवाज़ है पैपून की।

0: श्रोताओं, घड़ी में 7:51 हो चले हैं और कार्यक्रम में वक्त है अब अगली जानकारी का। शहर के वरिष्ठ कलाकार और प्रोफेसर रविंद्र रॉय की कलाकृति ऑपरेशन सिंदूर का चयन ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित थर्ड प्रिंट बिनेनले इंडिया 2026 ग्रैंड प्राइज अवार्ड के लिए किया गया है। क्या है इस पेंटिंग में खास और ये प्राइज, ये अवार्ड जो है क्या मायने रखता है, इसके बारे में हमने प्रोफेसर और आर्टिस्ट रविंद्र रॉय से खास बातचीत की।
1: मैं रविंद्र रॉय, मैं प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हूँ और मैं शांति निकेतन से मास्टर डिग्री करके आया हूँ।
0: वर्तमान में देखें, आपको ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक अवार्ड से नवाजा गया है, वो अवार्ड क्या है और आपने क्या कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं प्रिंटिंग टेक्निक से, हम उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहें।
1: कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं बोलूँ मेरे घर वाले सब कंटिन्यू टीवी के सामने रहते थे, हर हर मुहूर्त पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहला दिन तो बहुत

0: ग्रैंड प्राइज अवार्ड के लिए क्या गया है, क्या है इस पेंटिंग में ख़ास, और ये प्राइज ये अवार्ड जो है क्या मायने रखता है, इसके बारे में हमने प्रोफेसर और आर्टिस्ट रविंद्र रॉय से ख़ास बातचीत की।
1: मैं रविंद्र रॉय, मैं प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हूँ और मैं शांति निकेतन से मास्टर डिग्री करके आया हूँ।
0: वर्तमान में देखें आपको ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक अवार्ड से नवाजा गया है
1: जी।
0: वो अवार्ड क्या है और आपने क्या कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं प्रिंटिंग टेक्निक से, हम उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहें।
1: कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं बोलूँ मेरे घर वाले सब कंटिन्यू टीवी के सामने रहते थे, हर हर मुहूर्त पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहला दिन तो बहुत खराब लगा था, इतना वहाँ पर बहुत लोगों को मार दिया था, बहुत खराब लगा था। फिर कुछ दिन बाद मोदी जी का एकदम पावरफुल एक्शन बहुत अच्छा लगा, तो ना सोचा इसके ऊपर कुछ काम कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने काम किया, तब तो पता नहीं था कि अवार्ड होगा कुछ। मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते 3-4 महीना लग गया मुझे। फिर अचानक इंडिया प्रिंट बिनालय आया, वो जो 2-2 साल बहुत होता है, मगर ये पहले हुआ था 2000 में, उसके बाद अभी हुआ। वर्ल्ड के 34 कंट्रीज से काम भेजा गया है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो फिर हम भूल गए क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन होता है इंटरनेशनल, अवार्ड लगे ना लगे तो मैंने ध्यान नहीं, तो सिलेक्शन भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर कुछ जनवरी में हमने भेजा था, अक्टूबर में काम सिलेक्ट मतलब भेज दिया था वहाँ पर
0: जी।
1: फिर जनवरी में कलकत्ता में इसका एग्जीबिशन हुआ। कलकत्ता में ललित कला ने एक गैलरी बनाई है बहुत बड़ी सी, कई करोड़ रुपए का, 5 मंजिल, तो वहाँ उसका इनोग्रेशन भी था प्लस एग्जीबिशन भी था
0: जी जी
1: तो वहाँ के कुछ मेरे मित्रगण हैं, फोन आ रहे हैं, रवि तो कलकत्ता आ रहा, बोले मैं क्यों आऊँगा अभी, काम है घर पर, क्यों आऊँगा। बोला अच्छा, फिर और एक मित्रगण, रवि तो कलकत्ता आ रहा है क्या, बोले क्यों क्या हुआ क्या, बोले तुझे अवार्ड मिला है। तो बोले अवार्ड मिला, मैं शॉक हो गया, मैंने हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर उनने फोटो भेजा वहाँ के बैनर का, उसमें देख तुझे अवार्ड मिला है, बधाई हो तुझे। उसके बाद फिर काफ़ी सारे बंधु ने जो वहाँ शो देखने भी गए थे आसाम से इधर उधर से, बहुत बड़ा बिनालय कंपटीशन था, फिर वहाँ से गए, उन लोग ने भेजा फोटो भेजा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिसले कब हो गया अवार्ड, तो फिर वहाँ ललित कला में जिनको और भी मिला है अवार्ड, तो वर्ल्ड वर्ल्ड से 5 लोगों का अवार्ड मिला है।
0: अच्छा,
1: हाँ, उसमें से 2 इंडिया के हैं
0: जी जी
1: एक मैं हूँ और एक है बेंगलोर के बसु राजा, और एक पोलैंड के, कोरिया के और फ्रांस के। हाँ, अरे भोपाल से मैं हूँ तो अब मुझे भी एक अच्छा लगता है कि भोपाल MP से एक मुझे मिला है।
0: जी जी हाँ, बड़ी उपलब्धि है।
1: हाँ, बहुत बड़े, पहली बार आया मतलब भोपाल MP में,
0: MP में पहली बार ये अवार्ड मिला हुआ है। सर, ये जो खास तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होती है ताकि हमारे श्रोता उस चीज़ को समझ सके।
1: असल में प्रिंट मेकिंग होता है, प्रिंट मेकिंग के बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, इसमें एचिंग, लिथोग्राफी, सेरेग्राफी, लिनोकट, ऐसे कुछ कुछ प्रिंट होता है। फिर है तो मेरा सबसे मन पसंद है एचिंग, जो जिंक प्लेट के ऊपर किया जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, जिंक प्लेट के ऊपर प्लेट ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनने के बाद नाइट्रिक एसिड में उसको बाइट करते हैं जो थोड़ा खा जाता है, उसके बाद एक्वा करते हैं, फिर एक्वा करने के बाद डस्टिंग करते हैं, फिर बर्निशिंग करते हैं, फिर इंक करते हैं, इंकिंग करने के बाद फिर मशीन में लगाया जाता है, फिर प्रिंट लिया जाता है। और लंबा प्रोसेस है, कभी आपको दिखाऊंगा तो आप समझ में आएगा कैसा कैसा होता।
0: क्या राशि इसके, क्या कोई अवार्ड में कोई प्राइज?
1: हाँ, अवार्ड में 2 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी सम्मान अलग से रहेगा।
0: बहुत सारे श्रोता हैं सर, अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे ये, बहुत सारे श्रोता हैं आपकी उपलब्धि को जो सराह रहे हैं, आपसे बातचीत को जो सुन रहे हैं, उन तक आपकी कला से, आपके इस उपलब्धि से जुड़ी हुई और कोई ज़रूरी बात यदि आप साझा करना चाहें जो आपके मन में हो, तो सर वो क्या होगी?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो काम करते रहिए और लोगों को पैर खुश खींचते रहे तो खींचते ही दीजिए, अब अपना चुपचाप काम करिए, मतलब काम करते जाइए और अच्छे से काम करिए।
0: ग्रैंड प्राइज अवार्ड जीतने पर ये ख़ास बातचीत आप सुन रहे थे आर्टिस्ट और वरिष्ठ साहित्यकार रविंद्र रॉय से। श्रोता जी के साथ चलिए शामिल करते हैं।

तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई सूचना जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में अब विवेक कहार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन

0: करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
4: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे. इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है.

0: जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को

0: 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma.

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जिस रफ्तार से समय गुजर रहा है उतनी ही रफ्तार से हमारी अपनी जिंदगी में तो क्या दुनिया जहान में भी उतनी ही तेजी से परिवर्तन और बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में एक जगह आकर हम रुक जाते हैं और सोचने

सोचते हैं कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है, किस ट्रैक पर चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यूं लगता है कि हम हर दिन को जी नहीं रहे हैं बल्कि गुजार रहे हैं। और जब ये सोचने के लिए एक जगह आकर हम रुक ही गए हैं, तो क्यों ना जरा गुजरे वक्त के सुकून को याद कर लिया जाए, ताकि ये वक्त यहीं ठहर जाए।

श्रोताओ, सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। आज जब रुक कर सोचने की ही बात निकली है, तो क्यों ना सोच के साथ कुछ सीख ही लिया जाए। किसी भी विषय पर जब उसके चौतरफा पहलुओं पर विचार किया जाता है, तो हमारी सोच परिपक्व बनती है और उसके आधार पर लिया गया निर्णय हमें बेहतर परिणाम देता है। और इसी परिपक्व सोच के साथ मिले बेहतर परिणाम हमें जीवन में सफलता की राह पर ले जाते हैं। ये परिणाम जीवन में सफलता के रंग भरते हैं। ये परिणाम ही हमें सिखाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि ये परिणाम ही हमें सोचना और सीखना समझाते हैं।

दोस्तों, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत या प्रतिभा की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमारी सोच की भूमिका भी अहम होती है। बेहतर सोच ही मेहनत और प्रतिभा को सफलता के रंगों में रंगती है। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने बात की कि किस तरह से वक्त की रफ्तार के साथ

दुनिया जहां में भी बदलाव आ रहे हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। आज हम अपनी सोच से कम और कृत्रिम सोच के दृष्टिकोण को ज़्यादा अपना रहे हैं। आज हर सवाल के जवाब के लिए कृत्रिम बुद्धि का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन दिमागी कसरत के रूप में सोच का क्या? अगर वो भी मशीन ही करेगी तो हमारा विकास कैसे होगा? इस पर गहन सोच विचार की आवश्यकता आन पड़ी है। जैसे जैसे AI, मेटा और गूगल का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मानवीय सोच और मशीनी सोच का तुलनात्मक अध्ययन भी बढ़ता जा रहा है। आज हम सभी गूगल, मेटा और AI के अधीन हुए जा रहे हैं। आप भी इस पर सोचिएगा जरूर, और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संगीत को माध्यम बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है।

के उपयोग में आने से हमारे काम आसान और जल्दी तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरह सोचने का काम तकनीक शायद नहीं कर सकती, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग और मन किसी एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग तरह से सोचता है और उसके परिणाम भी अलग अलग ही सामने आते हैं। लेकिन क्या आपकी समस्याओं के सटीक समाधान या प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तकनीकी संसाधनों के पास कोई अनुभव है? ये प्रश्न अवश्य हमारे जहन में आता है, क्योंकि आप अपनी समस्याएं जब चार लोगों से डिस्कस करते हैं तो आपको चार अलग अलग अनुभव और नज़रिया मिलता है, जबकि तकनीकी संसाधन पर पूछी जाने वाली समस्या या प्रश्न ना तो वहाँ से हमें समाधान मिलता है, ना ही हमें कोई अनुभव वहाँ से मिलता है, वहाँ सिर्फ सुझाव मिलते हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इसका जवाब खुद से पूछिए और बातचीत आपसे करेंगे इस गीत को सुनवाने के बाद।

0: श्रोताओं, बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ, हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो सिंगनी प्रियंका, और हम बात कर रहे हैं सोच और उसके माध्यम से सीखने पर। और हमारा वार्तालाप केंद्रित है हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हम किस तरह से सोचते हैं और किसी बात को किस तरह से समझते हैं। दोस्तों, तकनीकी युग में संवेदनाओं और अनुभवों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीक के पास अभी भी भावनाओं का अभाव है। इसलिए ये आपको प्रत्युत्तर में वही देगा जो आप चाहेंगे, वह नहीं जो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे लिए जो भी अच्छा या बुरा है उसे हम अपनी सोच और समझ से वास्तविक रूप में हासिल कर सकते हैं। क्या कहा जा सकता है कि जब हम तकनीक उपयोग करते हैं या उसे सामने कोई तर्क देते हैं तो वह अक्सर हमारी बातों से सहमत हो जाता है। कई शोधों में पाया गया है कि लोग उन उत्तरों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें सही महसूस करवाते हैं, भले ही वे पूरी तरह से सही ना हो। और धीरे धीरे हम अपने विचारों को चुनौती देने के बजाय केवल उसकी पुष्टि खोजने लगते हैं। जब हर उत्तर हमें केवल संतुष्ट करने लगे तब हमारी निर्णय क्षमता वहीं कमज़ोर होती है। आमतौर पर भी हमने देखा है कि यदि हम कोई बात किसी से पूछते हैं तो जब वो व्यक्ति हमारे पक्ष में बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें सही लगता है और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही है। लेकिन जब कभी कोई आपकी किसी बात का विरोध करता है तो हम उसे नगण्य मान लेते हैं या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। श्रोताओ, तकनीक आपके जज्बातों का जवाब जज्बातों से नहीं दे सकता, इसके लिए बोलचाल में संवाद होना ज़रूरी है। जो तकनीक आपको संवाद दे लेकिन साथ में वो आवाज़ या ध्वनि नहीं देगा जिससे ये समझ सके या जान सके कि आपकी भावनाओं को वो कितना करीब से समझ रहा है।

म्यांमार के राष्ट्रपति यूमिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तिरुवनंतपुरम के सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप 12 उन्नत नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, आज क्यों कुछ भी जानने या पूछने की जरूरत के लिए तकनीकी संसाधन की ओर जेंजी बढ़ रही है, क्योंकि परिवार सीमित व्यक्तियों के दायरे में आ गया है। उसमें भी पेरेंट्स कामकाजी हो गए हैं। आज बच्चों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उनके पास परिवार के सदस्य मौजूद नहीं होते हैं कि वे उनसे पूछ लें। पेरेंट्स भी अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं चाहते हैं। तो देखा जाए तो आज जेन जी के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है या कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। जो भी हासिल करना है उन्हें यहीं से मिलना है, लेकिन हमें ये समझना और जानना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि किसी भी चीज़ का सही और सीमित उपयोग उस उपलब्धता की इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

दोस्तों, हर बदलाव अच्छा या बुरा हो सकता है। यह हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह अपनाते हैं और उसमें से हम अपने लिए क्या अच्छा या क्या बेहतर लेकर खुद को उसके साथ कितना एडजस्ट करते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। बचपन में हमारे पेरेंट्स या घर के अन्य सदस्य हैंडराइटिंग को सुंदर और सुलेखन के लिए अक्सर टोका करते थे, समझाया करते थे, हिसाब किताब को उंगलियों पर करना सिखाते थे। लेकिन जेन ज़ी के लिए आज सब कुछ कैशलेस और पेपरलेस हो गया है, जिसे अपनाने में हम भी कतराते नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की यही ज़रूरत है। ये मानकर उसे हम सीख भी रहे हैं और अपना भी रहे हैं, और समय के साथ चलना और बदलाव को स्वीकार करना, यही तो मानव का गुणधर्म है।

श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी सोच के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को महत्व दीजिए। सीखने की असली खुशी केवल सही उत्तर पाने में नहीं होती, बल्कि उस पूरी यात्रा में होती है जिससे हम गलतियाँ करते हैं, असफल होते हैं और फिर प्रयास करते हैं और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसलिए सीखने को केवल परिणाम तक पहुँचने का माध्यम न बनाएं, बल्कि उसे सोच की प्रक्रिया को जीना सीखें।

और अब अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को आज का सुरमई सवेरा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामदेन कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: रामदीन कुशवाहा और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए झलकी लॉटरी खुल गई। लेखक है अशोक बुलानी और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
1: प्रस्तुत है अशोक बुलानी की लिखी झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: बहना, नवयुग का अंधियारा नहीं, नवयुग का उजियारा, उजियारा छाया।
1: पर चिंटू आजकल तो अंधियारा ही छाया हैगा।
0: अरे छाया होगा अंधियारा, पर गीत में तो उजियारा ही हैगा।
2: अरे ओ महारानी, ये गाने बजाने का काम ही रह गया है बस, ढेर सारा काम पड़ा हैगा, वो कौन करेगा? डूड जैसी बड़ी हो गई पर अकल नाम को नहीं हैगी तेरे में। हाँ
1: पर अम्मा, हम तो भजन गा रहे हैंगे।
2: अरे तो ससुराल जाकर क्या भजन ही गाएगी? चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन तेरे मियाँ करेंगे।
1: हम ही नहीं करनी शादी। हाँ
2: क्या क्या कही?
0: हेलो कर लो बात, शुद्ध हिंदी में कह रही हैंगी दीदी कि हमें नहीं करनी है शादी।
2: अरे तू चुप कर रहे हा? बीच में झकर झकर किए जा रहा है।
1: हाँ हाँ सही कह रहे हैंगे, हमें नहीं करनी शादी।
2: तो क्या जिंदगी भर बैठी रहेगी हमारी छाती पे? हमें नहीं करनी शादी, जैसे लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैंगे तुझसे शादी करने को, छे छे लौट गए।
0: अम्मा आए भी तो एक से एक नमूने ही थे।
2: अरे तो कोई राजकुमार आएगा इसे बहाने?
1: ना आए कोई राजकुमार,

0: दहेज के लालची से भी शादी नहीं करनी हमें। हाँ
1: अरे वाह रे।
2: अरे वाह की क्या बात है अम्मा, सही तो कह रही है दीदी।
1: अरे पर ऐसे लोग कहाँ है इस दुनिया में।
2: अम्मा ये पिछली बार वाला लड़का तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था, बात भी जमती दिख रही थी।
1: खा पी के पूछताछ करके छोरे के बाप बोले गाना बजाना जानती हो, कोई भजन सुनाओ।
2: भजन नहीं गा सकती इसलिए वापस चले गए, जे तो बहुत जाती हैगी।
1: लड़के वालों के तो ऐसे ही नखरे होवे रे। अब पूछो उन समझदारों से कि भैया रे भजन सुनने का शौक है तो क्या बार बार बहू को सामने बिठा कर भजन सुनोगे? रेडियो का है नहीं खरीद लेते, फिर सुनो बैठ के भजन जो जी में आए।
2: अच्छा तो इसीलिए हमारी बहना भजन की प्रैक्टिस कर रही है।
1: क्यों बेटा। अच्छा तो ठीक है गा बेटा गा, पता नहीं कौन सिर फिरा फिर भजन की फरमाइश कर बैठे।

0: ये है हमारी जान के दुश्मन, डले हैं आराम से खटिया पर, खर्राटे ले रहे हैं। चिंटू उठा तो अपने बापू को।
1: हम नहीं उठाते हैं अम्मा, डांट लगाएंगे हम ही को। हाँ
0: अरे उठा दे बेटा।
1: नहीं तुम क्यों नहीं उठाती?
0: सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है।
1: हाँ तो सुबह सुबह हमारा भी पिटने का मूड नहीं है। कहा
0: अरे वाह रे आजकल की औलाद, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद का। हाँ
1: ठीक है अब ज्यादा ताव मत दिलाओ अम्मा। हाँ अभी उठाए देते हैंगे।
0: उठते ही दन्न से हुक्म देंगे। चाय कहाँ है? घर कोई ऑफिस समझ रखा है। आवाज दो और चपरासी चाय लेके हाजिर।
1: बापू, ओ बापू, बापू, बापू।
2: अबे कौन है कमबख्त?
1: हमें बापू।
2: अबे बापू के बच्चे काहे को आधी रात को उठा रहे हैं?
0: आधी रात? सुबह के 8 बज गए हैंगे और अभी तक तुम्हारी आधी ही रात हो रही है।
2: अरे बच्चों की अम्मा, दरअसल बात ये है कि हम बढ़िया सपना देख रहे थे।
0: हाँ सपना ही देखते रहना कि सोने चांदी के बर्तनों में माल पुए उड़ा रहे हैं।
2: सच्ची में आज भी यही सपना आ रहा था। पिछले कई दिनों से यही सपना आ रहा है।
1: वही सपना बापू कि हम बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैंगे, ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैंगे,
3: कलर टीवी हैगा, फ्रिज हैगी,
1: डीवीडी पर फिल्म देख रहे हैंगे और अम्मा बापू झगड़ रहे हैंगे कि कौन सी फिल्म देखें।
3: चिंटू अम्मा बापू सपने में भी झगड़ रहे हैंगे क्या?
2: अबे चुप। ए चिंटू की अम्मा, ए तुम्हें मालूम है सुबह सवेरे वाला सपना बिल्कुल सच होता आएगा।
0: तो ये तुम्हारा सुबह सवेरा है? 8:30 बज रहे हैंगे।
2: अरे पर मेरा सपना तो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। हाँ मंदिर की घंटी बज रही थी उस वक्त और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। अरे देखता क्या हूँ कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा हैगा यार। मैंने सोचा बत्ती बंद करना भूल गया हूँ।
1: फिर क्या हुआ बापू?
2: अरे फिर क्या, देखता क्या हूँ कि जे रोशनी तो साक्षात देवी माँ के चरणों की थी, साक्षात लक्ष्मी मैया दरवाजे पे मुस्कुराती खड़ी हैंगी।
0: अरे जाओ रहन दो, गप्पे हाँक रहे हैंगे सवेरे सवेरे।
2: अरे गप नहीं है बच्चों की अम्मा, सच्ची कह रहे हैं हम। हाँ 10 लाख का आशीर्वाद दिया है हमें।
1: पर बापू 10 लाख आएंगे कहाँ से?
2: अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है?
0: 28 तारीख है जी आज।
2: 28 तारीख? अरे वो मारा।
1: क्या मारा बापू, मच्छर?
2: अबे चल। ए बच्चों की अम्मा, तुमको लॉटरी का टिकट दिया था ना, ये संभाल कर रखने को, वो लेके आओ तो जरा जल्दी लाओ।
0: पर इनाम विनाम कुछ निकलता तो है नहीं।
2: ओहो जब बोलती हो बेसुरा बोलती हो। ए तुम लाओ तो।
0: हाँ हाँ लाती हूँ।
2: हा हा हा हा, कल 27 तारीख को लॉटरी का डिरा खुल गया होएगा। आज 28 तारीख है, आज अखबार में डिरा छपा तो जरूर होएगा। अभी थोड़ी देर में अखबार वाला हमारी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा।
1: अखबार वाला? पर बापू

0: हमारे यहाँ अखबार आता कहाँ है?
1: ये लो जी टिकट।
2: टिकट? अरे 10 लाख का चेक हैगा जे। चिंटू बेटा जा वर्मा जी के जहाँ से अखबार तो ले आ।
0: हम नहीं जाएंगे वर्मा जी के यहाँ।
2: क्यों?
0: रोज रोज मांगने में हमें शर्म आवे। हाँ
2: अरे जा जा बेटा, आज हो ले यार, बस आखिरी दिन, फिर कल से तो आनंद ही आनंद है। अरे दुनिया भर के अखबार मंगाएंगे और क्या कहते हैं वो तेरी खूब सारी मैगजीन।
1: जा बेटा जा ले आ।
0: ठीक है जी, ले आता हूँ। हाँ
1: रुक चिंटू, हम भी चलते हैं।
0: हाँ, चल चल चल।
1: अरे दो दो लोग जाओगे एक अखबार उठाने?
2: अरे जाने दे, लॉटरी वाला अखबार है आखिर।
0: बापू,
2: क्या हुआ?
0: वर्मा जी के अखबार तो नहीं मिला बापू।
2: अखबार नहीं मिला?
0: हाँ बापू, उनका अखबार तो शर्मा जी ले गए होंगे।
2: अरे यार जे शर्मा जी अजीब लीचड़ आदमी है, अपना खुद का अखबार तक नहीं मंगा सकते जे।
1: अरे तो वर्मा जी का अखबार शर्मा जी ले गए हैं तो शर्मा जी के यहाँ से लेते आते रहा ना तू बुद्धू के बुद्धू।
0: अम्मा अब बुद्धू मत कहियो ना, दीदी गई है शर्मा जी के अखबार लाने।
1: ये लो बापू अखबार।
2: हाँ ये अखबार नहीं 10 लाख का पिटारा है जे, मुझे दे। कहाँ है दादे?
1: ये लो।
2: हे लक्ष्मी मैया, लगा दे बेड़ा पार। अरे चिंटू, एक कौन से पेज पर आता है वो लॉटरी का रिजल्ट?
0: अंदर के पेज पे आवे बापू, पन्ने पलट कर देखो ना।
2: अरे यार ये तो भविष्य फल है। लिखा है बीबी से खटपट। देखा बच्चों, सही लिखा है ना, आज ही तुम्हारी माँ से खटपट हुई कि नहीं हुई?
1: अरे वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है?
2: चुप रहे, आगे लिखा है अचानक धन की प्राप्ति। अरे आज तो सच्ची में कुछ होने वाला है। ये रहा लॉटरी का डेरा। अरे चिंटू पढ़ तो बेटा नंबर ले।
0: हाँ लाओ लाओ।
2: हाँ, देख देख देख।
0: हाँ, पहला इनाम जो निकला है ना वो है के सीरीज का।
2: ओ महाराज, ये तो अपनी सीरीज है। और नंबर वो
0: के?
2: अरे कितनी बार के बोलेगा यार, आगे का नंबर क्यों नहीं बोलता?
1: अरे बोल तो रहा है। हाँ बेटा बोल बोल।
2: अबे बोलता है कि तू अगला पारा खींच के।
1: देखो अम्मा बापू को, अभी तो पैसा आया नहीं तब ये हाल हैगा।
2: अरे तू चुप कर। हाँ बोल रहे नंबर। नहीं नहीं, तू टिकट ला इधर दे दे
0: के।
2: अरे फिर के?
0: के 54
2: के क्या K54? अरे बम मारा यार, आगे आगे 53 है क्या रे चिंटू?
0: हाँ बापू आगे 53 ही है।
2: और आखिर के?
0: आखिरी के 521 है बापू।
2: क्या? हे लक्ष्मी मैया।
1: अरे क्या हो गया इन्हें बापू? ओ बापू
0: जे तो हो गए बेहोश।
1: क्या
0: अम्मा, लगता है आखिरी के नंबर भी मिल गए होंगे, लॉटरी निकल गई है 10 लाख की। हाँ सच्ची में अम्मा रे 10 लाख का पहला इनाम। अब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे हमारे, 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बहना।
1: अरे आग लगे तुम्हारी रकम में, जरा अपने बापू को तो देख, हराम क्या हो गया इनको।
0: अम्मा खुशी के मारे बापू बेहोश हो गए होंगे।
1: बेहोश हो गए?
0: हाँ अम्मा, अभी चप्पल सुखाते होंगे अभी ठीक हो जाएंगे।
2: अबे जे चप्पल गिन गिन के लगाएंगे हम तुम्हें, चप्पल सुखाता है हमें है? हम लखपतिये को
0: बापू 10 लखपतिये कहो।
2: हाँ 10 लखपतिया हो गया हूँ मैं, अब सारे अरमान पूरे करेंगे हम। बंगला होएगा, फ्रिज होएगा।
0: बापू हम बहुत दिनों से कह रहे हैंगे, पहले हमारी फरमाइश पूरी करने हैं।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ बोल बेटा, क्या चाहिए तेरे को?
0: मुकर मत जाना बापू।
2: अरे नहीं नहीं रे, तू बोल तो
0: बापू। हमें है ना, हमें है ना एक मोपेड दिलवा देना बस।
2: अरे था तेरे की मोपेड?
0: हाँ
2: बे, स्कूटर की बात कर, कार की बात कर, तुम बता बच्चों की अम्मा तुम्हें क्या चाहिए?
1: हिस्सलो के लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर इसका ब्याह धूमधाम से कर दो जी।
0: बापू हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेन लेकर आते हैं।
2: हाँ जे सही है यार, जे सही है, एक एक आइटम और उसका खर्चा लिखते जाते हैं।
0: हाँ।
2: जा।

0: मुरारीलाल
1: ए वर्मा जी, अबे तुम्हें किससे कर रहे हो?
0: तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें मांगते कहीं के।
1: मांगते कहीं के हैं? क्या मतलब? तुमसे कौन सी चीज मांगी भाई हमने?
0: अखबार लेकर नहीं आया हमारा? लाओ तो हमारा अखबार।
1: खबरदार, जो अखबार को हाथ लगाया तो।
0: अरे वाह, हमारा अखबार और हम ही हाथ नहीं लगा सकते?
1: अरे काय का तुम्हारा अखबार? अरे बेटा सल्लो, कहाँ से लाई तुम ये अखबार बताओ तो?
2: शर्मा अंकल के यहाँ से लाए थे। हाँ।
1: लो, सुन लिया?
0: पर शर्मा जी, हमारा अखबार ही तो ले गए थे।
1: तो ये तुम शर्मा से बात करो जाकर। शर्मा जी लेकर गए हैं तो शर्मा जी से ही जाकर लो अपना अखबार। दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ चले आए।
0: अबे ए मुरारी, मुंह संभाल कर बात करना।
1: अरे क्या मुंह संभाल कर बात करना? लखपति हो गए हम।
0: लखपति?
1: हाँ।
0: लखपति हो गए मतलब?
1: अरे 10 लाख की लॉटरी निकली हमारी, समझे? 10 लाख की।
0: अबे तो चाहे जैसी बात करेगा क्या है? एक उल्टा हाथ मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा तेरा।
1: क्या क्या क्या क्या क्या, क्या कहा? थोबड़ा तो मैं तेरा सही करता हूँ अभी के। ये ले।
2: अजय, अजय क्या हो गया? क्यों बिस्तर को पीट रहे हो नींद में?
3: बापू, बापू ये तकिये लेकर किससे मारामारी कर रहे हो?
2: कोई सपना देख रहे थे क्या बापू?
1: अरे सपना? अरे मेरे 10 लाख कहाँ गए? वो वर्मा का बच्चा कहाँ गया?
2: पर वर्मा जी आए कहाँ? हाँ, उनके यहाँ से अखबार जरूर लाया है चिंटू।
1: अरे तो लॉटरी का इनाम निकला?
2: हाँ निकला है, 10 रुपए का इनाम निकला है।
1: क्या 10 रुपए? हाय मेरे 10 लाख।

0: लॉटरी खुल गई। अभी आप अशोक बुलानी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाह, शिवांगी पवार, राजीव सिंह, कंचन राजानी और राकेश जैमिनी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: लॉटरी खुल गई, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे, जिसके लेखक थे अशोक बुलानी और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गीत।

आशिकी 2 फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इसका संगीत तैयार किया है जीत गांगुली ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं वरुण जैन, सचिन जिगर, शादाब फरीदी और अल्ताफ की आवाज़ों में ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत सचिन जिगर का है।

0: जरा हटके जरा बच के फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल के जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधायक निधि से विधान

विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण प्रहरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: सागर
1: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों का स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका का नमस्कार। श्रोताओं, आज के गीत सागर कार्यक्रम में आपके लिए एक नहीं तीन अलग अलग तरह की जानकारी लेकर आए हैं और ये जानकारी आधारित है आज के दिन विशेष यानी 30 मई के दिन जो दिन विशेष गठित किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

चाहते हैं हमारे पत्रकार। जी हाँ श्रोताओं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड द राइजिंग सन 30 मई 1826 को शुरू हुआ था और इसीलिए इस दिन यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था, इसे नई पहचान दी थी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये समाचार पत्र निकालने का श्रेय पंडित जुगल किशोर को जाता है। जी हाँ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल को हिंदी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। उन्होंने 30 मई 1826 को कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, से हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड उगता हुआ सूर्य का प्रकाशन शुरू किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में यह साल या यह दिन 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूल रूप से कानपुर की निवासी और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने अंग्रेजी प्रेस के ज़माने में अपनी मातृभाषा में आवाज़ उठाने के लिए इस क्रांतिकारी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। हालांकि हिंदी पत्रकारिता की नींव रखने का श्रेय उदंत मार्तंड को ही जाता है, लेकिन इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने इसे एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक मंच प्रदान किया। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के विकास और संस्थापकों में बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम भी अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है।

श्रोताओं, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें इंतजार किस चीज का होता है? जी बिल्कुल, चाय का तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ जब तक समाचार पत्र हमारे हाथ में ना हो तो चाय की चुस्की फीकी लगती है और इन समाचारों को हम तक

गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मीडियम वेव 188.32 MHz DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं 30 मई को गठित दिवसों के बारे में जानकारी। अभी हमने जानकारी हासिल की हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर और बताना चाहेंगे हम आपको कि आज गोवा का स्थापना दिवस भी है। जी हाँ श्रोताओं, गोवा का स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा के इतिहास और स्थापना दिवस से के बारे में यदि हम आपको बताएं तो हम कहेंगे कि गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा था और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, लेकिन इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में 30 मई के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता के बाद गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसका विभाजन किया गया, जिसके बाद गोवा को भारत का पूर्ण राज्य और दमन दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और इसी संदर्भ में 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

श्रोताओं, 30 मई के दिन की आज की तीसरी जानकारी। जी हाँ, आमतौर पर हम जीवन में सबसे अधिक जो खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वो चावल, गेहूँ या मक्का है, लेकिन इसके बाद सादा

ऐसा दिखने वाला आलू केवल एक सब्जी नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की थाली पोषण और आजीविका का आधार है। इसी महत्व को सम्मान देने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग नियमित रूप से आलू का सेवन करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आलू के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाना ही आज के दिन का खास उद्देश्य है और टिकाऊ कृषि और आलू उत्पादन को बढ़ावा देना, छोटे किसानों और ग्रामीण समुदायों को योगदान देना। 30 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में इसे घोषित किया था और पहली बार इसे 2024 में मनाया गया।

इसी के साथ आज का गीत सागर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आज इसमें आप सुनेंगे पुतुर देवदास जोशी का वायलिन वादन राग तोड़ी।

0: में कड़ी होगी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को को भेजा जाएगा। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर सिंह और सास गिरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 7:00 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे।
2: हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पर्यटन के बदलते आयाम के बारे में। गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं और काफ़ी सारे लोग घूमने का, कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इन सब का क्या मकसद है, क्या इनके फायदे हैं, इस विषय पर हम आप सभी की राय लेंगे और सुनवाएंगे कुछ मन पसंद, हमारी पसंद के गीत। तो चलिए कॉल कीजिए 2660902 पे और STD कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो
3: हेलो मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
3: जी फोन करेगी सुने हैं
2: जी? हाँ, नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
3: बात आपकी गीत हमारे हैं।
2: आज हम किसी विषय पर आपसे बात करेंगे और फिर सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत।
3: जी मैडम।
2: तो बताइए क्या शुभ नाम है आपका?
3: हमारा नाम गिरधारी सेन है।
2: गिरधारी
3: सेन?
2: कहाँ से बोल रहे हैं गिरधारी जी?
3: दमोह से बोल रहे हैं मैडम।
2: दमोह से? अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है?
3: फैमिली में बच्चे हैं हमारे दोनों।
2: अच्छा, और कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे?
3: अभी 12th पास हुआ है लड़का।
2: हाँ,
3: तो कॉलेज में जा रहा है। बच्ची अभी 10वीं पास हुई तो 11वीं क्लास में जा रही है।
2: अच्छा, चलिए। तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है कि नहीं आपने?
3: घूमे आए मैडम।
2: अच्छा, घूमा है, कहाँ पर घूम कर आए?
3: 2-3 जगह हुआ है, उज्जैन हो गया है।
2: हाँ
3: हाँ, और यहाँ पे अभी मैहर से लौटी है।
2: चलिए बढ़िया। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन पर्यटन के लिए जाते हैं
3: जी,
2: पर्यटन के लिए जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है?
3: अब उसमें क्या है कि मैडम जी, अब गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, बच्चों का एंजॉय हो जाता है।
2: हाँ,
3: और का और घूमने फिरने में थोड़ी क्या है कि अपने यहाँ से हट के दूसरे जगह वहाँ का माहौल भी अपना वो आ जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना, हम लोगों का जो मन है वो भी इतने सुंदर दृश्य देख के थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है
3: जी,
2: है ना, परिवेश बदलने से, माहौल बदलने से, सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर। बस इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो गिरिधर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने कॉल किया और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा और कल अपना प्रोग्राम

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पुतुर देवदास जोशी का वायलिन पर बजाया राग तोड़ी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार। हेलो,
1: नमस्ते। हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं
0: बुरहानपुर से सलीम,
1: जी?
0: बुरहानपुर से सलीम बोल रहा
1: बुरहानपुर से सलीम
0: हूँ।
1: जी। सलीम जी क्या हाल है?
0: अच्छे हाल है आप? तो बोलो मैडम, बहुत
1: हम
0: दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा आज लगा के देखो,
1: अच्छा।
0: आपका कार्यक्रम बहुत।
1: हाँ तो ये बताइए सलीम जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: हमारी फैमिली में दो भाई है,
1: हाँ
0: सात भतीजी, एक भतीजा है।
1: अच्छा। तो कहीं घूमने उमने जाते हैं कि नहीं जाते आप?
0: जाते मैडम, मैं तो नाबीना हूँ मैडम, मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिखता।
1: अच्छा लेकिन है ना महसूस तो कर सकते हैं आप,
0: हाँ मैडम,
1: है ना? तो बस यही जानना था कि जो हमारे पर्यटन हैं उनके बदलते आयाम क्या हैं, हम लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं कहीं भी अपने घर से बाहर जाकर, थोड़ा सा बाहर की
0: मैडम
1: वादियों।
0: इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ वातावरण साफ होना चाहिए, सुंदर
1: हाँ
0: होना चाहिए। हाँ,
1: हाँ
0: गंदगी साफ होना चाहिए बिल्कुल, माहौल अच्छा होना चाहिए, भाईचारा
1: बिल्कुल। और
0: का।
1: आज जो पहले हम लोग घूमते थे और आज के घूमने में कुछ तो फर्क आया है ना? अब ज्यादा आसान हो गया है या कठिन है? आप क्या कहना
0: नहीं
1: चाहते हैं?
0: मैडम, आसान तो हो गया, पर क्या है कि अभी भी जैसे कुछ परेशानी जाने में लगती है
1: जाने में बल्कि अब आसान हो गया, सबके पास स्मार्टफोन
0: ना।
1: है।
0: अपन जैसे बाहर जाओ,
1: हाँ
0: बाहर जो ट्रेन में तो ट्रेनों में इतनी गर्दी रहती कि मैं बता नहीं,
1: हाँ लेकिन पहले
0: उसमें
1: की तुलना
0: परेशान।
1: में अब
0: हाँ
1: अपन
0: वहाँ वहाँ पहले से आसान हो गया
1: पहले से
0: जाने।
1: काफ़ी आसान हो गया है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं, ट्रेन की
0: ये
1: बुकिंग
0: बात तो सही
1: एडवांस में
0: बात
1: कर लेते हैं, और गूगल मैप के ज़रिए हम अपना रास्ता भी चुन लेते हैं आसान तरीके से, है ना?
0: है। हाँ मैडम,
1: जी। चलिए समीर सलीम जी
0: हेलो
1: आपका। हाँ
0: मैडम,
1: जी
0: आपका नाम क्या है?
1: कविता रावत।
0: सविदास। चलो
1: चलिए
0: ठीक है,
1: सलीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
0: आपका भी धन्यवाद। बहुत पहली बार लगाया मैडम, बहुत दिनों से सुन रहा था रेडियो, मैं सुनता
1: चलिए
0: रहता हूँ, तो मैंने
1: बिल्कुल
0: कहा आप
1: आपका
0: ट्राई
1: हमेशा
0: करो।
1: लगेगा, आप ट्राई किया करिए,
0: हाँ
1: और धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम
1: आरती भारद्वाज।
0: आरती भारद्वाज।
1: हाँ
0: आरती जी, आपने कॉल 1 हफ्ते बाद ही किया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ।
1: नहीं, बहुत दिन में, करीबन 3-4 महीने हो गए
0: चलिए कोई
1: मतलब।
0: बात नहीं, एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर हम दोबारा कॉल नहीं ले पाते हैं अपने लिसनर्स का, इसलिए
1: मैंने
0: कोई बात।
1: फरवरी में लगाई थी।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बुरहानपुर से। हाँ
0: अच्छा, बुरहानपुर से हैं आप भी?
1: बुरहानपुर
0: अभी हमारे जो श्रोता का कॉल आया था सलीम जी का, और वो भी बुरहानपुर से थे, तो बुरहानपुर की
1: बुरहानपुर
0: लाइन आज काफी क्लियर है ना फोन
1: मैंने
0: कॉल
1: एक
0: से
1: बार
0: जी।
1: लगाई थी, 2 बार पहले लगाई।

0: लगा चुकी हूँ।
1: अच्छा। आरती जी
0: रोटी
1: क्या
0: रोटी में
1: करती
0: फंसे
1: हैं
0: कुछ
1: आप?
0: नहीं, घर का काम, वो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बाड़ी वगैरह लगाते हैं
1: अच्छा।
0: नहीं
1: फैमिली
0: तो
1: में
0: उधर
1: कौन
0: नहीं
1: कौन है?
0: क्या।
1: और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?
0: मेरे सास ससुर देवर देवानी ननद, हाँ सब है,
1: अच्छा।
0: दो लड़कियां हैं।
1: तो आरती जी कहीं घूमने जाती हैं आप पर्यटन के
0: हाँ
1: लिए?
0: अभी आए घूम के, तो अभी गए थे मायके, तो
1: अच्छा। तो
0: भोपाल से उधर साइड में पड़ता नर्मदापुरम जिले में शिवनी
1: हाँ
0: बनोपरा।
1: हाँ अच्छा। तो कैसा लगता
0: हाँ
1: है आपको, मतलब इसके अलावा भी आपने कहीं जो सुंदर सुंदर वादियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य वाली जगह जो होती हैं घूमने के हिसाब
0: हाँ
1: से, वहां भी घूमे हो?
0: हाँ बहुत घूमने की जगह हमारे यहीं पे बुरहानपुर में ही,
1: ये बात सही है। कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा घूमने लायक बहुत जगह है। आशीर्वाद का किला है, हम मतलब यहाँ रहते हैं, वहाँ 12 मंदिर है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनी है नागझिरी घाट है,
1: हाँ।
0: तो वहाँ भी रोज शाम को जाते घूमने,
1: ऐसा
0: आते
1: लगता है
0: वाते।
1: आपको कि है ना, घूमने से मतलब पर्यटन से हमें कई लाभ होते हैं, हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, मन को खुशी मिलती है, ऐसा होता है या नहीं?
0: हाँ घूमने
1: होता है ना
0: से थोड़ा
1: ऐसा?
0: अच्छा लगता
1: जी। चलिए आरती
0: है।
1: जी, बहुत बहुत
0: मैं
1: धन्यवाद।
0: प्रतिदेव जी बात करना चाह रहे थे,
1: हाँ जी बिल्कुल, करवाइए।
0: बात है। हेलो
1: हाँ जी नमस्ते।
0: बोलिए, जिस
1: आप बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आज।
0: टॉपिक पे बोले वही तो आप बोलोगे तो बोलेंगे।
1: आप ये बताइए कि पर्यटन के कुछ लाभ हमको मिलते हैं या नहीं मिलते? हम घूमने जाते हैं तो हमारा मूड थोड़ा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है?
0: बिल्कुल
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा
0: ठीक है, धन्यवाद।
1: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार। कौन
1: जी, नमस्कार।
0: बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: पूरा नाम?
1: राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, पहले भी आपसे बात हो चुकी है?
1: नहीं, मैं तो दो दो हफ्ते के बाद कॉल लगाया आपके पास।
0: अच्छा।
1: जी
0: नहीं,
1: जी
0: इसके पहले कभी बात हुई होगी? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के कि आपसे मैं बात कर चुकी हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपका जो नियम होता है 10 दिन का, तो मैं 2 हफ्ते के बाद कॉल लगाया, तो
0: बहुत
1: इसलिए कॉल
0: अच्छी
1: लगाया।
0: बात, बहुत अच्छी बात। राकेश जी,
1: जी
0: आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यटन के बदलते आयाम।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: उस
1: जी
0: बारे
1: जी
0: में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जो पर्यटक जो है बदलते जो राय, तो जैसे कि इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो पर्यटक जो आते हैं हम कहीं भी, उनकी बदलती राय ये होनी चाहिए कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाए, अगर मानो कि अगर आप शिमला आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक स्थल है, वही तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आप पर्यटक अगर आप घूमने आए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए इसके ऊपर, कि जो जो पर्यटक आए, तो अगर वो कहीं वो है तो है, नियम पर मानते नहीं है, जैसे कि कोई पर्यटक आए, अगर कूड़ा कवाड़ा कचरा जो है हर कहीं फेंक देते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना होना चाहिए पर्यटक पर।
0: देखिए, हाँ, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो काफ़ी नियम बनाए हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना ये तो हम आम इंसानों के हाथ में
1: आम इंसान
0: है
1: का
0: ना?
1: कि
0: एक
1: देखो,
0: व्यक्ति।
1: जैसे कि मानो कि मैं आपके क्षेत्र में हूँगा, तो मैं आपके क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंक दूंगा, तो हम सोचेंगे अरे चलो, हमने क्या है, हम आज के दिन आने हैं, कल हम चले जाएंगे अपन एंजॉय करके।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: हम ये सोच नहीं रखने की हम आज के दिन आए हम, तो मैं मान के, क्योंकि ये भारत देश

0: हमारा ये केला नहीं, जैसे कि अब ये मध्य प्रदेश का भोपाल, ये मध्य प्रदेश ये आपका नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का हिस्सा है।
1: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा भारत हमारा है और उसकी देखभाल करना, उसे स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है।
0: कर्तव्य है, जैसे कि अगर आप हिमाचल आते हैं तो ये हिमाचल है, हिमाचल वासियों का, ये ही पूरे भारत का है,
1: बिल्कुल
0: पूरे भारत
1: बिल्कुल
0: का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से तो आदमी की क्या बोलते जान बचती है, क्योंकि पूरे अब देखो अभी थोड़ी सी बात है, अभी पूरे देश में जो है लू चल रही है, 40-45 फुट तक जो है तापमान
1: हाँ
0: चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हिमाचल या जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं गर्मी के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो अगर हम उसी घर में अपने घर में आ रहे अपने देश में घूम रहे तो हम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम
1: बिल्कुल
0: ऐसा अपने
1: बिल्कुल
0: देश के साथ
1: आपकी
0: ऐसा
1: बात
0: करने
1: जन जन तक पहुंचेगी, और जो इस टाइप का कुछ अगर करते भी हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। पूरा
0: नहीं
1: भारत
0: है,
1: हमारा है,
0: अगर
1: उसकी सुरक्षा उसकी स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा,
0: जो
1: ठीक
0: आकाशवाणी
1: है।
0: भोपाल सुन रहे हैं, जो पूरा जो देश सुन रहा है, तो आप हिमाचल आए, कृपया करके आप स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए, आप
1: हिमाचल जाएं
0: पूरा
1: या कहीं भी
0: कश्मीर
1: जाएं, स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखने की बेहद आवश्यकता है, तभी हम अपने
0: का
1: भारत को स्वच्छ रख पाएंगे, ठीक है
0: स्वच्छ रख
1: ना।
0: पाएंगे।
1: और स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: मंदिर भोपाल। जी
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश में ही आप बात कर रहे हैं।
1: जी कारी जन यादव बोल रहा हूँ, संदलपुर से।
0: क्या नाम बताया आपने?

0: चरण यादव संदलपुर से आपके पास गाँव मेरा मिला।
1: काली चरण यादव?
0: हाँ जी, काली चरण यादव ग्वालियर पास गाँव मेरा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: मेरे
1: गाना सुनना पड़ेगा। देखिए आप है ना, आज जो कॉल लगाए हैं वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, तो आज हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपसे अपने विचार साझा करेंगे और गीत आज हमारी पसंद के होंगे। ठीक है, तो कालीचरण जी ये बताइए कि आप घूमने जाते हैं बाहर कहीं अपनी फैमिली को लेकर आउटिंग के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको क्या लगता है, कुछ आपको मन आपका खुश होता है वहाँ जो अच्छी अच्छी ऐसा? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, घर तो रहना बेहद जरूरी। हाँ, कहाँ घूम चुके आप?
0: मैं तो कानपुर वगैरह घूमिया, दिल्ली गया था।
1: अच्छा अच्छा, तो वहाँ कभी आप ऐसा पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच में गए हैं?
0: नहीं,
1: पहाड़ उधर नहीं है, पर किधर तो होंगे ना, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए?
0: पहाड़ की तरफ इधर है गांव, इधर पड़ती है गांव में, उधर हमारे पास में उधर पहाड़ है।
1: तो गए हैं आप, आपको कैसा लगता है वहाँ पर जाकर?
0: बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा मिलती है, ठीक ठंडक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, मंदिर भी चल गई थी।
1: अच्छा, चलिए कालीचरण। मैं कविता रावत बोल रही हूँ। अच्छी है, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा, कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा आप, ठीक है? बोल दीजिए,
0: हमारे नाम ग्वालियर से 45 साल पुराना सोता हूँ ग्वालियर का।
1: जानते हैं,
0: मेरे पत्र मिलने दे, मेरे को जब ग्वालियर से लेता हूँ तो मिलने दे, वो पानी पहुँच रहे मेरे।
1: ठीक ठीक चलिए, ओके।
0: हमारे नाम बोलने 2:30 बजे
1: आपका नाम आएगा ना, कल आप प्रोग्राम सुनिएगा 11 बजे से।
0: परमाशा बोल दे, प्रोग्राम
1: बिल्कुल बोलेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कालीचरण जी,

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो, फोन करें गीत सुने दीदी। नमस्कार जी
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुनने नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: दीदी। दीदी हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह।
1: जी दीदी,
0: मेहरबानी है आपकी, कॉल किया आपने।
1: बड़ी मुश्किल में कॉल लगती दीदी। कार्यक्रम सभी सुनते हैं आकाशवाणी भोपाल के,
0: ये
1: और
0: तो बात
1: बचपन से
0: सही है।
1: रेडियो का शौक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं।
1: जी भैया,
0: मेहरबान
1: आप
0: सिंह
1: लोग
0: जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज का विषय है कि पर्यटन के बदलते आयाम क्या है, उसका उद्देश्य, हम जब घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं, ये बताइए, क्या क्या लाभ हैं उससे हमें।
1: पटल जाते हैं दीदी।
0: बताइए ना, आप जाते हैं कहीं घूमने,
1: हाँ
0: तीर्थ
1: दीदी,
0: यात्रा पे गए।
1: अगर हाँ समय समय जब समय मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अभी तो टाइम मिला नहीं, तो अभी तो नहीं जा पाए हैं।
0: इस बार नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वैसे तो कभी गए हैं ना, तो क्या फर्क दिखता है आपको? आप पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है आपको?
1: देखिए दीदी, जाते तो हैं और घूमते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घूमने भी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखते ऐसा होता है ना, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो थोड़ी सी कभी कभी बोरियत होने लगती है, और जब कुछ समय के लिए हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नयापन आता है, बदलाव आता है ना? बिल्कुल,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत।
0: और अब नए आयाम में यह फर्क बहुत आया है कि जैसे पहले हम लोग है ना, कहीं बाहर जाते थे तो बहुत सारा पैसा रख के ले जाना पड़ता था, फिर उसकी हिफाजत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अरे पैसा रखा है, पैसा रखा है पास में, कहीं निकल ना जाए, कहीं कोई निकाल ना ले, है ना?
1: जी,
0: आजकल
1: बिल्कुल
0: ये हो
1: बिल्कुल।
0: गया है, सबके पास है ना, सब पेटीएम गूगल पे यूज़ करते हैं, तो आसानी से कहीं भी कैशलेस होकर जा सकते हैं, है ना? फ़ोन के ज़रिए पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट भी करना होता है तो लोग अधिकतर फ़ोन के ज़रिए ही करने लगे हैं, तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो गया है हम सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है दीदी, क्योंकि अब तो पहल से सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि अब तो
0: बिल्कुल
1: मोबाइल

0: लेन देन में आसानी हो रही, कहीं भी अपन कैच ले सकते हैं।
1: हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारे अपने लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: हकीकत में।
1: ठीक है, चलिए
0: साथ
1: बस।
0: में विचार दिया आपने दीदी, और जो आप दीदी हम जो कहना पूछना चाह रहे थे, कौन दीदी बात कर रही हैं?
1: कविता रावत,
0: जी कविता जी, आपसे शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही हो, जो आप लोग बड़ी मेहनत से बातचीत करते हैं, अच्छी प्रस्तुति रहती है आप लोगों की।
1: जी थैंक यू वेरी मच मेहरबान सिंह जी, और
0: जी
1: एक
0: जी
1: हफ्ते
0: जी
1: बाद
0: धन्यवाद।
1: दोबारा कॉल कीजिएगा। जी
0: जी बिल्कुल जरूर लगाएंगे, हम तो सुनते रहते हैं कार्यक्रम, आप
1: जी
0: लोगों की बातचीत अच्छी लगती है दीदी हमें।
1: जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम तो बताइए और कहाँ से
1: हाँ,
0: बोल
1: मैं
0: रहे हैं।
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। मैं मनमोजी।
0: नियाज मोहम्मद
1: हाँ
0: जी,
1: जी, फरमाइए मैम, कैसे है आज का
0: हम तो
1: त्यौहार?
0: अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं आप।
1: हम
0: आपका
1: बहुत
0: त्योहार
1: अच्छे,
0: कैसा बीता परसों आप।
1: और त्यौहार का तो बहुत अच्छा बीता है हमारा। हम गांव से देहात में थे अभी, तो बहुत अच्छा मिलनसार गांव देहाती होता है ना। तो अपने अभी इंदौर में
0: बिल्कुल।
1: रहता हूँ, मगर मैं वहाँ अभी यहाँ पेटत्र गांव में आया हूँ। मैं
0: अच्छा,
1: अपना गांव है तो
0: हाँ
1: जहाँ
0: हाँ
1: से अभी अभी मेरे भाई ने भी फोन किया था, वो वहाँ से भी बहुत श्रोता, बहुत अच्छे दर्पण में बहुत अच्छा आता था पहले। आप पढ़ती थी, सर भी पढ़ते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम आपका जो होता है मैम, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जीना तेरी गली में रहना, उसी में जैसे प्यार के रंग भरे और प्यारे अल्फाजों में। आपकी आवाज बड़ी दिलों की बातों, आवाज बड़ी सुरीली होती है सब।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। आपका जो प्रसारण का जो है, ये कार्यक्रम जो बहुत अच्छा, श्रोताओं को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं तो कई बार हमें अपने श्रोताओं की बातें भी बड़ी अच्छी और काम की लगती हैं।
1: हाँ
0: तो वो तो परस्पर एक दूसरे से विचार साझा करके सभी को फायदा होता है। हमें भी आप लोगों की बातचीत से काफी फायदा होता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो एक दूसरे से दोनों का तालमेल
0: बिल्कुल,
1: होगा
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इसका एक रंगत रंगत बन जाती है। हाँ
0: बिल्कुल मंसूरी जी।
1: जी,
0: और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस
1: बिल्कुल।
0: के जो चेंज हुए हैं, बदलते आयाम, वो आपको कैसे लगते हैं? पहले की
1: तो
0: तुलना में अभी
1: मैम
0: आपको क्या फर्क महसूस होता है?
1: देखो, पहले हमारी अपनी अपनी पीढ़ी के वक्त वक्त समय इतना साधन नहीं थे, और युवा पीढ़ी के हर जगह वक्त समय है। उनका जो प्रभावित है और हमारे जो प्रभावित जो शब्द है, उनमें बहुत काफी अंतर हो गया है। ये जैसे
0: जैसे बताइए आप।
1: कि जैसे अब जैसे युवा वर्ग है, युवा वर्गों को घूमने को नई नई चीजें उसे होती हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी और भाई यहाँ गर्मी लग रही है, तो वहां चले, वहां पर उस थोड़ा सुकून मिल सकता है आप
0: हिल
1: लोगों को।
0: स्टेशन वगैरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ, तो ये वहां सुकून मिल सकता है आप लोगों को मिलने से। तो वास्तव में जाना भी चाहिए, घूमना भी जरूरी है। मनुष्य की मानसिक जीवन को संतुलन करने के लिए थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नियाज जी। धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: कॉल
1: मैम।
0: करने के
1: मैम
0: लिए।
1: आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा
0: कविता
1: बता सकते
0: रावत,
1: हैं?
0: कविता रावत
1: आज माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया आपका। आप
0: जी,
1: फोन,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।

0: बैठक में लिया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। प्रदेश में पांचवीं और आठवीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। भोपाल के भारत भवन में सदानीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 2 जून तक किया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मालवी लोक गायन से शुरू होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रोताओं की पसंद के गीत से, जो कि मौसम के अनुसार है। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है, फिल्म सिंदूर। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमेध गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का सिंदूर फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इसके साथ ही अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का आदेश दिया गया है। ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत, जो कि आप पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद हमें भिजवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज़ किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। और पसंद करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश आपने हमको भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, शिवानी शिवा श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, काप सहेड़ा नई दिल्ली से, नशरीन आज़ाद आसमान, आमना आसमा परी और इमरान अहमद बागवान। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जो है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त राजावर परिवार। इसी गीत की पसंद हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। इस गीत की एक पसंद हमें ग्राम

बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम की मिली है, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पसंद मिली है हरदेव मीका, बलविंदर पिरक, जेतिक बिरक और मीका पिरक की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। शब्द रचना अनजान की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में आप भेजते हैं हमें अपनी फरमाइश के पत्र और हम सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नवरंग से, आवाज़ें

0: आशा भोसले, चितलकार और साथियों की, शब्द रचना भरत व्यास की है और संगीत सी रामचंद्र का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिल हरी खेरा से, संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव। इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे की। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराजा आज़ाद नगर लखसर हरिद्वार से। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं ये गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म नवरंग से।
1: कारी कारी कारी अंधियार की रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम, झुम, झुम, झुम, झुम, झुम, झुम, झुम, झुम।

कानन कानन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक रुम झुम झुम झमक झमक छुम छुम

गिरे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर पपीहा। पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा। मन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उभारे। प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: आशा भोसले, चितलकार और साथियों के गाए नवरंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।

0: हसन बट भाई और फाता कैसी हैं और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ मिस, सब ठीक है। सलाम भेजा है आप लोगों को।
0: अल्लाह सबको सलामत रखे।
1: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
0: खाना नहीं खाएगा क्या?
1: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
0: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
1: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
0: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
1: अच्छा अम्मी, अब्बा आ जाएं तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
0: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो, ये मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है। अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: अरे भाई, इस उम्र के बच्चों को संभालना, समझना बहुत मुश्किल काम है।
1: क्या कहते हो जी?
0: अरे सच कह रहा हूँ फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो जी, पर इस बुढ़ापे में हम कर भी क्या सकते हैं?
0: नहीं, कुछ भी नहीं, बस देखते रह सकते हैं। वो जो भी करें बस देखते रहो, देखते रहो।
1: हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, आखिर हमें अपने बच्चों का ही तो सहारा है।
0: सच कहती हो फजी, बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम? मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आई तो

0: इस पर हमारा कोई अख्तियार भी नहीं है।
1: छोड़ो भी इन बातों को, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरे कहने से ना तुम्हारे कहने से।
0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है, जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: नहीं रहने दो।
1: अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक रोटी और ले लो।
0: नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया।
1: एक तो पहले से ही कम खाया और रोटी

0: एक प्याली गर्म चाय पिला देना।
1: इतनी रात को चाय?
0: बस सिर भारी लग रहा है।
1: ठीक है, अभी बना देती हूँ।
0: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
1: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
0: सुनो, वो कुछ लकड़ियां देती जाना, अलाव में आग जला दूं। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन

0: मायके में रहना चाह रही थी, सो अभी आई नहीं है।
1: एक बात कहूं फजी, बुरा तो ना मानोगी?
0: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
1: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
0: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलियां क्यों बुझा रही हो?
1: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
0: अरे बात क्या हुई?
1: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
0: मेहर, बताओ तो हुआ क्या?
1: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
0: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
1: फजी, मेरी मान, तू बहू को बुला ले, ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है, और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
0: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
1: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
0: बीबी, बुरा नहीं मानती पर...
1: परवर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
0: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
1: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
0: किसने कहा तुमसे ये सब झूठ है?
1: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है, उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
0: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है, जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
1: छोड़ो भी उनकी बातों को, सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
0: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
1: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
0: अरे अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी, सो नहीं आई, और क्या।
1: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि...
0: क्या कहते हैं?
1: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
0: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी, मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
1: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं, मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो

0: मुझे माफ कर देना। तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
1: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
0: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
1: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
0: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
1: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
0: हाफिज खुदा।

0: Vas-y. Vas-y. Vas-y. क्यों क्या हुआ बाजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेहर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोयना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक सिसकिया की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष के तहत अब प्रदेश में सिर्फ 5 रुपये में सिंचाई पंप का नया बिजली कनेक्शन मिल रहा है। बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी और अधिक जानकारी के लिए बिजली दफ्तर या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल के भारत भवन में सदानीरा जल रंग संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 2 जून तक चलेगा।

0: आज शाम 5:30 बजे से आयोजन मालवी लोक गायन के जरिए शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच और प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जब विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं तो इसे वैश्विक सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता विश्व में शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक सहभागिता के माध्यम से देश अपने ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इससे नई खोजों और विकास कार्यों को गति मिलती है, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में और देशों के बीच सहयोग से मानव का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान भी अकेले किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के कई देशों ने एक दूसरे की सहायता की, जो वैश्विक सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। वैश्विक सहभागिता से विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी देशों में शिक्षा प्राप्त कर नए अनुभव हासिल करते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। बहनों, वैश्विक सहभागिता आधुनिक विश्व की आवश्यकता है। यह केवल देशों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों, सभी देश मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व में शांति, समृद्धि और सहभागिता स्थापित की जा सकती है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत साथी याद पढ़ाना, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम नया दौर।
1: बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करिमा तिवारी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अच्छा करिमा जी, ये बताइए, जैसे कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में, चूंकि गर्म पूरा वातावरण गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में

0: डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक फैलती हैं।
1: अच्छा, ये जैसे कि लू लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं?
0: लू लगने के मुख्य कारण है तेज धूप में अधिक समय तक रहना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, क्योंकि बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे शरीर से पानी की कमी होने लगती है, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और सिर ढककर बाहर ना निकलना लू लगने के मुख्य कारण।
1: जी अच्छा करमन जी, जैसे कि ये गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले तो एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा,
0: आने के बाद तो पानी ना पिए लेकिन जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा, शरीर में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: पानी की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, बेहोशी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती
1: है। अच्छा गर्मी जी, जैसे कि गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं? आजकल गर्मी में जैसे कि पेय पदार्थ लोग ज्यादा पीते हैं, तो कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं?
0: जो इस मौसम में अवेलेबल होते हैं, पहली बात तो उन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे गर्मी में नींबू का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, ताजे फलों का रस, गन्ने का रस, ये सभी लाभदायक है।
1: अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग जैसे बाहर का खाना, अब आजकल का चलन ही है कि लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो गर्मी के मौसम में बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हाँ, गर्मी में बाहर का बासी या खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं।
1: अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, कम पेशाब आना और जो पेशाब का कलर होता है वो बहुत डार्क येलो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और शरीर में थकान महसूस होना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, हमेशा कभी भी जाएं तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे, साफ सफाई रखें, तेज धूप से बचकर रहें, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।
1: सचमुच गर्मा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गर्मा जी।
0: वैसे भी सब बहनों को बहुत प्यार और बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत आनंद आया। नमस्कार
2: बहनों, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, लेकिन आज बढ़ती गर्मी, जनसंख्या वृद्धि और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में तापमान बढ़ने से जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। लोग पानी, खेती और अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संरक्षण न हो पाना भी जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट सड़कों के कारण वर्षा का पानी जमीन में नहीं समा पाता, परिणाम स्वरूप भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और जल स्तर नीचे चला जाता है। बहनों, जल स्तर कम होने से कुएं, तालाब और हैंडपंप सूखने लगते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहनों, इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश की पानी जमीन में पहुंच सके। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए क्योंकि वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खेतों में सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर

लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बहनों, जल ही जीवन है। यदि आज हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी बचाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। सामूहिक प्रयासों से ही हम गिरते जल स्तर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहनों, आइए सुनते हैं गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

बहनों, अभी हमने सुना गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आया सावन झूम के। बहनों, मुझे पता है आपको इंतजार है आज के व्यंजन का, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पना। बहनों, आम पना भारत का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक पेय है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बनाया और पिया जाता है। यह कच्चे आम से तैयार किया जाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं आम पना बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री है कच्चा आम, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीने की पत्तियां, पानी और बर्फ के टुकड़े। विधि है, कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आमों को कुकर या बर्तन में उबाल लें और ठंडा होने पर छिलका हटा दें। फिर आम के गुदे को मिक्सी में डालें और उसमें चीनी, काला नमक, भुना जीरा और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। तैयार मिश्रण को बड़े बर्तन में निकालें और ठंडा पानी मिला दें। अब गिलास में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा आम का पना परोसें। बहनों, आम का पना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से बचाने में मदद करता है, पाचन के लिए लाभदायक होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। बहनों, आइए सुनते हैं गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया है सोनू निगम और जसपिंदर नारूला ने। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

बहनों, अभी हमने सुना गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया था सोनू निगम जसपिंदर नरुला ने। फिल्म का नाम सूर्यवंशम। बहनों, अब इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है,

0: भी है। न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको इसमें सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आपने सुना परचन गीत, आवाज़ संध्या पाठक की थी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सुहाग गीत, आवाज़ संध्या पाठक की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बैलन गीत, आवाज संध्या पाठक की और प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

संध्या पाठक के गाए इस बैलन गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब सुनिए सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवाज लल्लू राम की।
1: वृंदावन कुंज भवन नाचत
0: आवाज लल्लू राम शुक्ला।

0: अभी आप सुन रहे थे नीरज की रचना, आवाज़ लल्लूराम शुक्ला की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ट्यून कीजिए मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर या फिर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। लॉगिन करें और सुने ज्ञान सूचना मनोरंजन की त्रिवेणी युवाओं की वाणी युववाणी प्रतिदिन शाम 5:02 पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में हर शाम 5:02 पर सुनिए शानदार नगमे, ज्ञान विज्ञान और करियर की बातें, युवा प्रतिभाओं से भेंट, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार और रेडियो एंकर्स की रोचक लुभावनी प्रस्तुतियां। ट्यून करें मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफ़र जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के गाए आशा भोसले के गीत से, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: So much up.
1: Namaskar, samacharon ke saath main Prashant Sengar. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा एक वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। CM डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जुड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन

0: ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार

0: मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति वू सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए

खट्टा मीठा फिल्म के गीत से लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार और साथी, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत राजेश रोशन का।

0: राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की थी और फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम थे ग्राम भैंसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर। इसी गीत को पसंद किया था कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुविधा नेवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया था प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने। और रेलवे कॉलोनी बठिंडा से इस गीत की पसंद आई थी जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं गोरीनगर इंदौर से आनंदपुर कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गीत की एक पसंद मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की। तो इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में चरस फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दादा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से, अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित व मोहित, बेरडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुर, दतरंगी से भागवत वर्मा। इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है दादा से, आवाज़ यशोदास की है, शब्द रचना कुलवंत जानी की और संगीत उषा खन्ना का है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना कुलवंत जानी का लिखा गीत। आवाज़ यशोदास की थी और फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इस गीत की एक फरमाइश हमें मिली है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा ततरंगी से इसे पसंद कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। और सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, आवाज़ कुमार सानू और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम है जुर्म। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का जुर्म फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 144वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

शांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर और रात 8:15 पर। शाम 6 बजे प्रसारित करेंगे भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा। इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का कार्यक्रम प्रसारण समय है 7:45। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 बजे सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 23 सेकेंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

अभी आपने सुना संध्या पाठक की आवाज में ये परचन गीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है लोक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुहाग गीत है, आवाज साधना पाठक की, संध्या पाठक की। इसे दोबारा सुन लीजिए। अगला गीत सुहाग गीत है और आवाज संध्या पाठक की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए बेलन हाय गीत, आवाज संध्या पाठक की।

संध्या पाठक के गाए इस बेलन हाई गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की रचना से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना, आवाज़ लल्लू राम शुक्ला की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और आप सुन रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। अभी आपने सुनी ब्रह्मानंद की रचना, आवाज थी लल्लू राम शर्मा की। अब सुनिए लल्लू राम शर्मा कार्यक्रम के अंत में, अब सुनिए लल्लू राम शुक्ला के का गीत आवाज नीरज की।

लल्लूराम शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है चित्रपट संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी और फिल्म थी प्रोफेसर। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म मन की आंखें से। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना साहिर की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मन की आंखें। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना थी साहिर की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आप सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की आवाज़ में।

एक थी लड़की। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी अजीज़ काश्मीरी की और संगीत विनोद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत तलाश। इस फिल्म का गीत आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत एस टी बर्मन का।

बेजू बावरा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मौसम फिल्म का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत मदन मोहन का।

0: मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और लोकभवन श्रीनगर का भी उन्होंने दौरा किया। देर शाम को उनका भोपाल वापस पहुंचने का प्रोग्राम है। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज कई जिलों में तेज धूप के कारण गर्मी पड़ रही है और कुछ जिलों में आंधी तूफान का दौर चल रहा है, जबकि कुछ जिलों में ओले गिरने और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए झलक की लॉटरी खुल गई। लेखक अशोक बुरानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
2: प्रस्तुत है अशोक बुलानी की लिखी झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: नवयुग का अंधियारा नहीं, नवयुग का उजियारा, उजियारा छाया।
1: पर चिंटू आजकल तो अंधियारा ही छाया हैगा।
0: अरे छाया होगा अंधियारा, पर गीत में तो उजियारा ही हैगा।
2: अरे ओ महारानी, ये गाने बजाने का काम ही रह गया है बस, ढेर सारा काम पड़ा हैगा, वो कौन करेगा? डूड जैसी बड़ी हो गई, पर अकल नाम को नहीं हैगी तेरे में। हाँ
1: पर अम्मा, हम तो भजन गा रहे हैंगे।
2: अरे तो ससुराल जाकर क्या भजन ही गाएगी? चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन तेरे मियाँ करेंगे।
1: हमें नहीं करनी शादी। हाँ
2: क्या क्या कही?
0: एलो कर लो बात, शुद्ध हिंदी में कह रही हैंगी दीदी कि हमें नहीं करनी है शादी।
2: अरे तू चुप कर रहे, बीच में झकर झकर किए जा रहा है।
1: हाँ हाँ सही कह रहे हैंगे हम, हमें नहीं करनी शादी।
2: तो क्या जिंदगी भर बैठी रहेगी हमारी छाती पे? हमें नहीं करनी शादी, जैसे लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैंगे तुझसे शादी करने को, छे छे लौट गए।
0: अम्मा आए भी तो एक से एक नमूने ही थे।
2: अरे तो कोई राजकुमार आएगा इसे बहाने?
1: ना आए कोई राजकुमार, पर किसी दहेज के लालची से भी शादी नहीं करनी हमें। हाँ
2: अरे वाह रे।
0: अरे वाह की क्या बात है अम्मा, सही तो कह रही है दीदी।
2: अरे पर ऐसे लोग कहाँ है इस दुनिया में।
0: अम्मा ये पिछली बार वाला लड़का तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था, बात भी जमती दिख रही थी।
2: खा पी के पूछताछ करके छोरे के बाप बोले, गाना बजाना जानती हो, कोई भजन सुनाओ।
0: भजन नहीं गा सकती इसलिए वापस चले गए, जे तो बहुत जाती हैगी।
2: लड़के वालों के तो ऐसे ही नखरे हो रे। अब पूछो उन समझदारों से कि भैया रे, भजन सुनने का शौक है तो क्या बार बार बहू को सामने बिठा कर भजन सुनोगे? रेडियो का है नहीं खरीद लेते, फिर सुनो बैठ के भजन जो जी में आए।
0: अच्छा तो इसीलिए हमारी बहना भजन की प्रैक्टिस कर रही है।
2: क्यों बेटा? अच्छा तो ठीक है, गा बेटा गा, पता नहीं कौन सिर फिरा फिर भजन की फरमाइश कर बैठे।

0: ये है हमारी जान के दुश्मन, डले हैं आराम से खटिया पर, खर्राटे ले रहे हैं। चिंटू उठा तो अपने बापू को।
1: हम नहीं उठाते हैं अम्मा, डांट लगाएंगे हम ही को। हाँ
0: अरे उठा दे बेटा।
1: नहीं तुम क्यों नहीं उठाती?
0: सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है।
1: हाँ तो सुबह सुबह हमारा भी पिटने का मूड नहीं है।
0: अरे वारी आजकल की औलाद, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद का। हाँ
1: ठीक है अब ज्यादा ताव मत दिलाओ अम्मा। हाँ अभी उठाए देते हैंगे।
0: उठते ही दन्न से हुक्म देंगे। चाय कहाँ है? घर कोई ऑफिस समझ रखा है। आवाज दो और चपरासी चाय लेके हाजिर।
1: बापू, ओ बापू, बापू, बापू।
2: अबे कौन है कमबख्त?
1: हमें बापू।
2: अबे बापू के बच्चे काहे को आधी रात को उठा रहे हैं?
0: आधी रात? सुबह के 8 बज गए हैंगे और अभी तक तुम्हारी आधी ही रात हो रही है।
2: अरे बच्चों की अम्मा, दरअसल बात ये है कि हम बढ़िया सपना देख रहे थे।
0: हाँ सपना ही देखते रहना कि सोने चांदी के बर्तनों में मालपुए उड़ा रहे हैं।
2: सच्ची में आज भी यही सपना आ रहा था। पिछले कई दिनों से यही सपना आ रहा है।
1: वही सपना बापू कि हम बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैंगे, ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैंगे।
3: कलर टीवी हैगा, फ्रिज हैगी,
1: डीवीडी पर फिल्म देख रहे हैंगे और अम्मा बापू झगड़ रहे हैंगे कि कौन सी फिल्म देखें।
3: चिंटू अम्मा बापू सपने में भी झगड़ रहे हैंगे क्या?
2: अबे चुप। ए चिंटू की अम्मा, ए तुम्हें मालूम है सुबह सवेरे वाला सपना बिल्कुल सच होता है?
0: तो ये तुम्हारा सुबह सवेरा है? 8:30 बज रहे हैंगे।
2: अरे पर मेरा सपना तो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। हाँ मंदिर की घंटी बज रही थी उस वक्त और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। अरे देखता क्या हूँ कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा हैगा यार। मैंने सोचा बत्ती बंद करना भूल गया होऊंगा।
1: फिर क्या हुआ बापू?
2: अरे फिर क्या, देखता क्या हूँ कि जे रोशनी तो साक्षात देवी माँ के चरणों की थी, साक्षात लक्ष्मी मैया दरबार।

0: दर्जे पे मुस्कुराती खड़ी हैंगी।
1: अरे जाओ रहन दो, गप्पे हाँक रहे हैंगे सवेरे सवेरे।
0: अरे गप नहीं है बच्चों की अम्मा, सच्ची कह रहे हैं हम। हाँ 10 लाख का आशीर्वाद दिया है हमें।
2: पर बापू 10 लाख आएंगे कहाँ से?
0: अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है?
1: 28 तारीख है जी आज।
0: 28 तारीख? अरे वो मारा।
2: क्या मारा बापू, मच्छर?
0: अबे चल। ए बच्चों की अम्मा, तुमको लॉटरी का टिकट दिया था ना, ये संभाल कर रखने को, वो लेके आओ तो जरा जल्दी लाओ।
1: पर इनाम विनाम कुछ निकलता तो है नहीं।
0: ओहो, जब बोलती हो बेसुरा बोलती हो। ए तुम लाओ तो।
1: हाँ हाँ लाती हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, कल 27 तारीख को लॉटरी का डिरा खुल गया होएगा। आज 28 तारीख है, आज अखबार में डिरा छपा तो जरूर होएगा। अभी थोड़ी देर में अखबार वाला हमारी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा।
2: अखबार वाला? पर बापू हमारे यहाँ अखबार आता कहाँ है?
1: ये लो जी टिकट।
0: टिकट? अरे 10 लाख का चेक हैगा जी। चिंटू बेटा जा वर्मा जी के जहाँ से अखबार तो ले आ।
2: हम नहीं जाएंगे वर्मा जी के यहाँ।
0: क्यों?
2: रोज रोज मांगने में हमें शर्म आवे।
0: अरे जा जा बेटा, आज हो ले आया रे, बस आखिरी दिन, फिर कल से तो आनंद ही आनंद है। अरे दुनिया भर के अखबार मंगाएंगे और क्या कहते हैं वो तेरी खूब सारी मैगजीन।
1: ए जा बेटा जा ले आ।
2: ठीक है जी ले आता हूँ। हाँ
1: रुक चिंटू, हम भी चलते हैं।
2: हाँ, चल चल चल।
1: अरे दो दो लोग जाओगे एक अखबार उठाने?
0: अरे जाने दे जाने दे, लॉटरी वाला अखबार है आखिर।
2: बापू बापू बापू।
0: क्या हुआ?
2: वर्मा जी के अखबार तो नहीं मिला बापू।
0: अखबार नहीं मिला?
2: हाँ बापू, उनका अखबार तो शर्मा जी ले गए होंगे।
0: अरे यार जे शर्मा जी अजीब लीचड़ आदमी है, अपना खुद का अखबार तक नहीं मंगा सकते जे।
1: अरे तो वर्मा जी का अखबार शर्मा जी ले गए हैं तो शर्मा जी के यहाँ से लेते आते रहा ना तू बुद्धू के बुद्धू।
2: अम्मा अब बुद्धू मत कहियो ना, दीदी गई है शर्मा जी के अखबार लाने।
1: ये लो बापू अखबार।
0: हाँ ये अखबार नहीं 10 लाख का पिटारा है जे, मुझे दे। कहाँ है ला दे।
1: ये लो।
0: हे लक्ष्मी मैया, लगा दे बेड़ा पार। अरे चिंटू एक कौन से पेज पर आता है वो लॉटरी का रिजल्ट?
2: अंदर के पेज पे आवे बापू, पन्ने पलट कर देखो ना।
0: अरे यार ये तो भविष्य फल है। लिखा है बीबी से खटपट। देखा देखा बच्चों, सही लिखा है ना, आज ही तुम्हारी माँ से खटपट हुई कि नहीं हुई?
1: अरे वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है?
0: चुप रहे, आगे लिखा है अचानक धन की प्राप्ति। अरे आज तो सच्ची में कुछ होने वाला है। ये रहा लॉटरी का डेरा। अरे चिंटू पढ़ तो बेटा नंबर ले।
2: हाँ लाओ लाओ।
0: हाँ, देख देख देख।
2: हाँ। पहला इनाम जो निकला है ना वो है के सीरीज का।
0: ओ महाराज यही तो अपनी सीरीज है। और नंबर वो
2: के?
0: अरे कितनी बार के बोलेगा यार, आगे का नंबर क्यों नहीं बोलता?
1: अरे बोल तो रहा है। हाँ बेटा बोल बोल।
0: अबे बोलता है कि दूर अगला पाड़ा खींच के।
1: देखो अम्मा बापू को, अभी तो पैसा आया नहीं तब ये हाल हैगा।
0: अरे तू चुप कर। हाँ बोल रहे नंबर। नहीं नहीं तू टिकट ला इधर दे दे
2: के।
0: अरे फिर के?
2: के 54
0: के क्या के 54? अरे वो मारा यार, आगे आगे 53 है क्या रे चिंटू?
2: हाँ बापू आगे 53 ही है।
0: और आखिर के?
2: आखिर के 521 है बापू।
0: क्या हे लक्ष्मी मैया।
1: अरे क्या हो गया इन्हें बापू? ओ बापू
2: जे तो हो गए बेहोश।
1: क्या
2: अम्मा, लगता है आखिरी के नंबर भी मिल गए हैंगे, लॉटरी निकल गई है 10 लाख की। हाँ सच्ची में अम्मा, अम्मारे 10 लाख का पहला इनाम। अब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे हमारे, 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बहना।
1: अरे आग लगे तुम्हारी रकम में, जरा अपने बापू को तो देख, हराम क्या हो गया इनको।
2: अम्मा खुशी के मारे बापू बेहोश हो गए हैंगे।
1: बेहोश हो गए?
2: हाँ अम्मा, अभी चप्पल सुखाते हैंगे अभी ठीक हो जाएंगे।

0: अबे जय चप्पल गिन गिन के लगाएंगे हम तुम्हें, चप्पल सुंगाता है हमें है? हम लखपतिये को
1: बापू 10 लखपतिये कहो।
0: हाँ 10 लखपतिया हो गया हूँ मैं, अब सारे अरमान पूरे करेंगे हम, बंगला होएगा, फ्रिज होएगा।
1: बापू हम बहुत दिनों से कह रहे हैंगे, पहले हमारी फरमाइश पूरी करने हैं।
0: हाँ हाँ हाँ हा, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को?
1: मुकर मत जाना बापू।
0: अरे नहीं नहीं रे तू बोल तो।
1: बापू हमें है ना, हमें है ना एक मोपेड दिलवा देना बस।
0: अरे था तेरे की मोपेड? अबे स्कूटर की बात कर, कार की बात कर, तुम बता बच्चों की अम्मा तुम्हें क्या चाहिए?
2: इस सल्लो के लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर इसका ब्याह धूमधाम से कर दो जी।
1: बापू हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेन लेकर आते हैं।
0: हाँ, जे सही है यार, जे सही है, एक एक आइटम और उसका खर्चा लिखते जाते हैं।
1: हाँ।
0: जा।
3: मुरारीलाल, अबे ओ मुरारीलाल।
0: वर्मा जी, अबे तुम्हें किससे कर रहे हो?
3: तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें मांगते कहीं के।
0: मांगते कहीं के हैं? क्या मतलब? तुमसे कौन सी चीज मांगी भाई हमने?
3: अखबार लेकर नहीं आया हमारा? लाओ तो हमारा अखबार।
0: खबरदार जो अखबार को हाथ लगाया तो।
3: अरे वाह, हमारा अखबार और हम ही हाथ नहीं लगा सकते?
0: अरे काय का तुम्हारा अखबार? अरे बेटा सल्लो, हाँ। कहाँ से लाई तुम ये अखबार बताओ तो?
2: शर्मा अंकल के यहाँ से लाए थे। हाँ।
0: लो सुन लिया।
3: पर शर्मा जी हमारा अखबार ही तो ले गए थे।
0: तो ये तुम शर्मा से बात करो जाकर, शर्मा जी लेकर गए हैं तो शर्मा जी से ही जाकर लो अपना अखबार। दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ चले आए।
3: अबे ए मुरारी, मुंह संभाल कर बात करना।
0: अरे क्या मुंह संभाल कर बात करना, लखपतिये हो गए हम।
3: लखपतिये?
0: हाँ।
3: लखपतिये हो गए मतलब?
0: अरे 10 लाख की लॉटरी निकली हमारी, समझे 10 लाख की।
3: अबे तो चाहे जैसी बात करेगा क्या है, एक उल्टा हाथ मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा तेरा।
0: क्या क्या क्या क्या क्या, क्या कहा? थोबड़ा तो मैं तेरा सही करता हूँ अभी के। ये ले।
2: अजी अजी क्या हो गया, क्यों बिस्तर को पीट रहे हो नींद में?
1: बापू बापू ये तकिये लेकर किससे मारा मारी कर रहे हो?
2: कोई सपना देख रहे थे क्या बापू?
0: अरे सपना? अरे मेरे 10 लाख कहाँ गए? वो वर्मा का बच्चा कहाँ गया?
2: पर वर्मा जी आए कहाँ? हाँ उनके यहाँ से अखबार जरूर लाया ही चिंटू।
0: अरे तो लॉटरी का इनाम निकला?
2: हाँ निकला है, 10 रुपए का इनाम निकला है।
0: क्या 10 रुपए? हाय मेरे 10 लाख।

0: लॉटरी खुल गई। अभी आप अशोक बुलानी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाह, शिवांगी पवार, राजीव सिंह, कंचन राजानी और राकेश जैमिनी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म के गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर और सोनू निगम की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन मदन मोहन और संजीव कोहली का।

वीर जारा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत मदन मोहन और संजीव कोहली का था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है फिल्म संगीत दिल से। इस फिल्म का गीत आप सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत ए आर रहमान का।

उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल से फिल्म का गीत। शब्द रचना गुलजार की थी और संगीत AR रहमान का। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और फाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
0: अच्छा अम्मी अब्बा आ जाएं तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
1: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो, ये मुश्ताक सारे को लेने गया था।

0: आया नहीं अभी तक क्या?
1: थोड़ी देर पहले ही आया है।
0: है कहाँ?
1: अपने कमरे में है।
0: सारे?
1: सारे नहीं आई।
0: क्या सारे नहीं आई है? मुश्ताक तू लेने गया था ना?
1: गया तो था पर सारे नहीं आई।
0: वहाँ सब सलामत तो है ना?
1: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
0: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
1: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
0: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
1: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
0: तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
1: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
0: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: बहुत मुश्किल काम है।
1: क्या कहते हो जी?
0: अरे सच कह रहा हूँ फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो जी, पर इस बुढ़ापे में हम कर भी क्या सकते हैं?
0: नहीं, कुछ भी नहीं, बस देखते रह सकते हैं। वो जो भी करे बस देखते रहो देखते रहो।
1: हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, आखिर हमें अपने बच्चों का ही तो सहारा है।
0: सच कहती हो फजी, बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम? मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आई तो परेशान होकर खाना खाने भी नहीं आया। इतनी सी बात और परेशानी इतनी बड़ी कि बस
0: फजी, हमें लगता है कहीं ना कहीं

0: इस पर हमारा कोई अख्तियार भी नहीं है।
1: छोड़ो भी इन बातों को, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरे कहने से ना तुम्हारे कहने से।
0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है, जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: नहीं, रहने दो।
1: अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक रोटी और ले लो।
0: नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया।
1: एक तो पहले से ही कम खाया और रोटी

0: एक प्याली गर्म चाय पिला देना।
1: इतनी रात को चाय?
0: बस सिर भारी लग रहा है।
1: ठीक है, अभी बना देती हूँ।
0: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
1: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
0: सुनो, वो कुछ लकड़ियाँ देती जाना, अलाव में आग जला दूँ। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलिया क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी मेरी मान, तू बहू को बुला ले, ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है, और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती पर
0: परवर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
0: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
1: किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है।
0: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
1: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
0: छोड़ो भी उनकी बातों को, सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
1: हाँ गया तो था मुश्ताक,
0: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
1: अरे अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
0: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि।
1: क्या कहते हैं?
0: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
1: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कहे देती हूँ, हाँ बुरा ना मानना, तुम जहां भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
0: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं। मैंने तो जो सुना था वही कह दी। बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
1: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
0: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
1: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
0: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
1: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
0: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: Fuzzy? Fuzzy? Fuzzy? क्यों क्या हुआ फजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी

0: क्यों, कोई बात हुई क्या भाई? तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो, क्या बात है?
1: नहीं, कुछ भी तो नहीं।
0: फजी, तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है, अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आस पास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई, सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी, निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है, मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है, मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ, देखो देखो, ये एक बात मैं कह देता हूं, तुम मेयर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहां।
0: देखो फजी, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है, हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूं कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ, मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोयना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां का चौथा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदला जा रहा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। ये दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजोरा गांव में हुई, जहां करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपाल स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो आज सेमीफाइनल में जापान की सायका होबारा और यऊची शिमोगामी से पराजित हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। सुख का तो ठीक है, लेकिन दुख में आत्मनिर्भरता ही आपके काम आती है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके टैलेंट से, आपके अपने कौशल से। आपका ये टैलेंट ही आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। कैसे, जानते हैं आज की युववाणी में। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आत्मनिर्भरता की बात की, ये क्या है और कैसे काम आती है, जानते हैं राहुल और प्रिया की बातों के जरिए। राहुल ने कहा, आजकल हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन सच बताऊं, आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें कुछ अच्छा कौशल सीखना पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कौशल विकास मतलब बस डिग्री ले लेना नहीं है, मतलब वो हुनर सीखना जो काम आए, जिससे आप पैसे कमा सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे आजकल लड़के लड़कियां सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे बगल वाले भैया ने तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। पहले वो मजदूरी करते थे, अब खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ खुद ही संभाल रहे हैं अब वो। ये है असली आत्मनिर्भरता। प्रिया ने कहा कि हाँ, सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ITI, पॉलिटेक्निक, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम सुनकर रह जाते हैं, असल में जाना, ट्रेनिंग लेना और फिर लगना भी तो पड़ता है। राहुल ने कहा, कौशल सीखने के बहुत से फायदे हैं। नौकरी की तलाश में भटकना बंद हो जाता है, खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और देश भी मजबूत होता है। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, एक गांव की लड़की अगर अच्छे से हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग या ऑनलाइन काम सीख ले तो वो न सिर्फ खुद कमा पाएगी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे सकती है। एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर पूरा गांव। राहुल ने कहा, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता, लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोगों का ये सोचना कि ये काम तो छोटा काम है, और शुरुआत में पैसे भी कम मिलते हैं। प्रिया ने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स, फ्री एप्स के जरिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस लगन चाहिए। राहुल ने कहा, वाकई में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। जितना ज्यादा हुनर सीखोगे उतना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे। चाहे नौकरी करो, अपना काम शुरू करो, आत्मनिर्भर इंसान कभी हार नहीं मानता। प्रिया ने कहा, और सबसे बड़ी बात ये कि आत्मनिर्भर व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, राहुल और प्रिया की बातों के जरिए ये तो समझ में आता है कि किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन हाथ का हुनर जीवन बदल देता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। कौशल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं KK की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में हमारा युवा समाज नशे की लत का ज्यादा शिकार है। आज युवाओं के नशे का मुख्य कारण है उनमें सहन शक्ति की कमी। देश का युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वो भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं, फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। नशे को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, नशे की लत से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, जानते हैं आस्था तोमर से।
1: दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता, बल्कि इसमें देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के राह पर जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू कर देता है तो उसका घर परिवार सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। सारे देशों में भारत सबसे अत्यधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है, लेकिन जब युवा पीढ़ी गलत राह पर चली जाए तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है। आज नशा इस कदर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जैसे एक दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। नशा नाश के समान होता है और आज भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से नशाखोरी की प्रवृत्ति अपना रही है। आजकल लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। आजकल के युवाओं में नशा करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कारों की कमी और नशीले पदार्थों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार। यदि आज के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना है, उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकना है, तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। जब नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं होगी तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे। आज सरकार और बहुत सारे ऐसे संस्थान जो युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी यह समझने की ज़रूरत है कि वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भली भांति कर सकते हैं, इसलिए नशीले पदार्थों को अपनी लत ना बनाएं। ये समझने का समय आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पागलपन भरी प्रतिस्पर्धा युवाओं के भविष्य को सुधारने के बजाय बर्बाद कर रही है। प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर छात्रों को तनाव में डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। माता पिता का

0: ध्यान अपने बच्चों को कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते देखने पर ही नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वह एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करें जो सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम हो। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और हर कदम पर उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें अपने कौशल को निखारना चाहिए लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को भी समझना चाहिए। उन्हें पढ़ाई और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। माता पिता को यह समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को डांटना और उन्हें लत छोड़ने के लिए मजबूर करना मदद नहीं करता है। किसी भी तरह की लत से छुटकारा पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप आस्था तोमर को सुन पा रहे थे। दोस्तों, माता पिता हमारे साथ हर जगह नहीं होते, इसलिए वो हमें संस्कार देते हैं और उनके ये संस्कार ही हमें जीवन में हर गलत राह पर जाने से रोकते हैं, हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। नशा छोड़ने के लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचे। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ या अपने संग साथियों या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमें समझ सके और जो सही और गलत में फर्क बता सके, उनसे शेयर जरूर करें। जब भारत का युवा वर्ग नशे की लत से दूर रहेगा तब तो वो अपने करियर के बारे में सोच पाएगा। और आज के समय में करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये

और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पिथौरा भित्ति चित्र कला के विषय में। पिथौरा भित्ति चित्र कला क्या है? दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बहुत खूबसूरत और जीवंत कला है। ये मुख्य रूप से राठवा और भील समुदाय के लोग ही बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूजा पाठ और अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक पारंपरिक तरीका है। पिथौरा चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर घर की मुख्य दीवार या पूजा वाले कमरे की दीवार पर ही बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग इस्तेमाल होता है, जो कि प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते हैं, जैसे चावल का आटा, हल्दी, फूल, पत्तियां, ये सभी। और आजकल बाजार के रंग भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, ये जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फिर कलाकार, जिसे कि लखेरा कहते हैं, वो बांस की पतली छड़ी या ब्रश से बिना किसी नक्शे के सीधे चित्र बनाते हैं। चित्रों में घोड़े, बैल, हाथी, मोर, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, देवी देवता और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा चौकोर या आयताकार बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य कहानी छुपी हुई होती है। चारों तरफ सुंदर बॉर्डर और छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिथौरा मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे शादी, किसी बच्चे का जन्म, घर बनना या कोई मनोकामना पूरी होने पर। लोग मानते हैं कि पिथौरा बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। ये आदिवासी संस्कृति का आईना है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और देवता सभी एक साथ रहते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, कलाकार इसे कैनवास, कपड़े और कागज पर भी बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं, ताकि नई पीढ़ी इसे सीखे और कलाकारों की आय बढ़े। दोस्तों, पिथौरा कला हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। ये हमारी जड़ों, प्रकृति और आस्था का सुंदर मेल है। तो अगर आप कभी राठवा गांव जाएं, तो इन जीवंत दीवारों को देखना कभी मत भूलिएगा। ये चित्र सिर्फ दीवार नहीं सजाते, बल्कि हमारे दिल को भी छू जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही टेंशन लेकर के जाया ना करें, क्योंकि आपको हर रोज आपका मूड डिस्टर्ब करने के हजारों बहाने मिलेंगे। लेकिन हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखें। जब भी आप अच्छा फील ना कर रहे हो, तो अपने मूड को बदलने के लिए सॉन्ग सुने। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुजैन की आवाज में।

दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:30 होने को हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
10: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
11: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
9: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
10: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर

0: सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं सुखविंदर सिंह और वाजिद की आवाज़ों में फिल्म दबंग का ये गीत, जलीस शेरवानी के बोल और साजिद वाजिद का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म रावण से। एकॉन, विशाल ददलानी और श्रुति पाठक की आवाज़ों में ये गीत आप सुनेंगे, जिस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत है विशाल शेखर का।

अमृता काक और मीका सिंह की आवाज़ों में फिल्म रेडी का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के बोल लिखे आशीष पंडित ने और संगीत था देवश्री प्रसाद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: फिल्म मौसम का गीत अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और पंकज कौर की आवाज़ों में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

işi yer dika, bol kırın dika. Miss World diki, World Cup dika. Chandrayaan dika, insect dika, nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानीज नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है, आल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड।

0: न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की ये खास खबरें।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं। उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपना लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: साथियों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको जानकारी है कि भारतीय प्रसारण का ये 90वां वर्ष चल रहा है और अब से कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून 2026 को हम भारतीय प्रसारण के ये 9 दशक पूरे करने वाले हैं और इसी क्रम में हमने कोशिश की है कि हम आकाशवाणी के संस्मरणों को, इसकी यात्रा को, इसके विकास क्रम को जानें और समझें और इसलिए आज हमने एक बड़ी चिरपरिचित आवाज़ को अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है। उनका नाम बताए बिना, उनका परिचय दिए बिना केवल उनकी आवाज़ से आप उनको जान जाएंगे। हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है राज्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश शासन श्री राजेश भट्ट जी को। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और आज एक नए रूप में हमारे तमाम श्रोताओं के बीच आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके साथ भी।
1: सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार आप संभाल रहे हैं तो क्या वहाँ जाकर आकाशवाणी को भूल तो नहीं गए?
2: देखिए, कार्यभार किसी भी पद का हो या ना भी हो तो भी आकाशवाणी को भूलना तो अब इस जन्म में संभव नहीं है। आकाशवाणी इतना रग रग में बस गया है, एक बहुत लंबा समय, लगभग 32 वर्ष से ज़्यादा का समय आकाशवाणी में बिताया। पूरा जिसको कहना चाहिए एक लाइफ का एक इतना बड़ा अहम हिस्सा इसकी स्टूडियोज़ में गुजरा है तो ये तो भूलना बिल्कुल असंभव है।
1: अब देखिए, हम 90 वर्षों पर बात कर रहे हैं और कितने अच्छे नोट से आपने इस बातचीत की शुरुआत की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब आप आकाशवाणी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है?
2: देखिए, मैं सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। एक समय वो था जब आकाशवाणी मेरे लिए सिर्फ एक

0: नौकरी करने की जगह हुआ करती थी। 1993 में 93 में जब मैं आकाशवाणी में पहली बार आया तो उस समय एक युवा के रूप में सिर्फ चूँकि एक अच्छी नौकरी लगी है ये एक दृश्य सामने था। लेकिन जिस तरह से आकाशवाणी के साथ फिर जब मैं जुड़ा, यहाँ की कार्यप्रणाली, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को अपने पूरे 32 साल के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जब देखा, सुना, समझा, तो एक चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ वो ये था कि यहाँ दिमाग से ज़्यादा दिल से काम किया जाता है।
1: वाह।
0: और यही इस संस्था का एक चीज़ को कहना चाहिए जिसकी आत्मा है,
1: USP।
0: ऑफिसेज बहुत सारे होते हैं, कई तरह के ऑफिस है जहाँ पे काम करना ही होता है और हमें उसकी तनख्वाह मिलती है, ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिमाग से काम नहीं करना होता है, दिल से भी काम करना होता है। 24 घंटे एक तरह से हमारा दिमाग अपने इस केंद्र के लिए कुछ कार्यक्रमों के लिए चलता रहता है। तो अब ये कहना कि ये एक नौकरी का स्थान है, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिन बाद में नौकरी एक गौण होती चली गई और ये एक मिशन, एक कार्य के रूप में सामने आने लगा। तो जब इस तरह से कोई संस्थान के साथ जुड़ जाते हैं
1: जी,
0: तो अब इसका तो जवाब सिंपल सा ये है कि वो फिर इतना घुल मिल जाता है कि आकाशवाणी का शब्द सुनते से ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना आंगन है जिसमें हम खेले कूदे बड़े हुए। यानी इतना हमारा व्यक्तित्व आकाशवाणी के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो जिस तरह से हमें अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से मिलने पर खुशी होती है, उनके बारे में सुनने पर खुशी होती है, वैसी ही खुशी आकाशवाणी के बारे में उसका नाम मात्र सुन लेने से, उसकी ट्यून मात्र को सुन लेने से महसूस होती है।
1: जी, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आकाशवाणी ने पिछले 9 दशकों में समाज के विभिन्न वर्गों में एक बौद्धिक समृद्धि दी है, उनके जीवन को एक बदलाव दिया है और उसे लगातार लाने की सकारात्मक दिशा में कोशिश की है। उस प्रकार के बदलाव आप किस तरह से देखते हैं और किस प्रकार के बदलाव आपने महसूस किए हैं कि लोगों के जीवन में वो आ पाएँ?
0: बिल्कुल, मैंने अपने पूरे आकाशवाणी के पूरे कार्यकाल के दौरान इस चीज़ को बहुत महसूस किया। और शायद जो मैं बात शुरुआत जो भी की थी ना, दिल से जुड़ा होने का कारण यही होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसका परिणाम जब नज़र आता है तो काम करने का उत्साह और बढ़ जाता है।
1: जी,
0: हम कार्यक्रम बनाते थे उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए, उन दूर दराज में लोगों रहने वालों के लिए जिनके पास जानकारी का अभाव होता था, सही जानकारी का अभाव होता था, समय पर दी गई जानकारी का अभाव होता था। ऐसे में हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो एक अच्छी जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ अच्छा मनोरंजन दे रहा है, और उसके बाद जब हम उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव देखते हैं
1: जी,
0: और जब हम ये पाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलाव के पीछे हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा है, तो वो जो खुशी मिलती है वो ज़बरदस्त होती है। और ये हमने लगातार किया, बल्कि ये हमारा काम ही था। एक लोक प्रसारक के रूप में ऐसे तमाम विषयों को हम उठाते थे जिसकी आवश्यकता आजकल लोगों को है।
1: जी,
0: हो सकता है कि इस दौड़ में हम कई बार कई अन्य केंद्रों की साथ यदि तुलना करें तो हम कहीं पिछड़े हुए नज़र आएँ, क्योंकि हमें वैसा आकर्षक नहीं है या वैसे हम खिलंदड़ापन नहीं है, वैसा खुलापन नहीं है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत कम, और हमें लोगों को जानकारी देने की, सही जानकारी गंभीरता के साथ और सटीक जानकारी और समय पर जानकारी देने की आवश्यकता ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जो पूरा जीवन में, लोक जीवन में परिवर्तन जब हम आकाशवाणी के माइक से देखते हैं
1: जी,
0: जब हम लोगों से बातचीत करते हैं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, या जब हम फील्ड में जाते थे लोगों से जब बात होती थी और हमें पता चलता था कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कार्यक्रम की वजह से उन्हें ये जानकारी मिली और उस जानकारी मिलने की वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो ये हमने लगातार देखा है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये हमें उत्साहित भी करते हैं। एक उदाहरण बताऊं तो मैं, मनोरंजन की जब बात आई थी, तो जब हम मनोरंजन करते हैं हमारा हर गाना कई बार बड़ी अच्छी जानकारियों के साथ में भी लिपटा हुआ होता है। सुनने में हो सकता है कि वो छोटी सी जानकारी हो, लेकिन हम किसी अच्छे से गीत के पहले कही गई दो पंक्तियाँ, हमारे अनाउंसर द्वारा कही गई दो पंक्तियाँ किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है क्या? बिल्कुल ला सकती है। कई बार हमारे किसी गाने के पहले की कही गई सकारात्मक बात को सुन करके कई लोगों ने अपने उस समय आने वाले आत्महत्या के विचार को भी टाल दिया।
1: क्या बात!
0: तो जब वो हमें ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हम उस क्षण में थे, हम विचार कर रहे थे कि हम आत्महत्या कैसे करें और कर नहीं जा रहे थे, उसी समय हमें गाने के पहले की कही गई ये दो बात सुनाई दी और हमने थोड़ी देर के लिए हमने अपना मन भटका और वो
1: आवेग चला गया
0: और वो आज हमारे साथ है।

0: समाज को एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले। तो ये तो अनुभव बहुत सारे हैं इस तरह के।
1: समाज के विभिन्न वर्गों की बात चल रही थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने आकाशवाणी जगदलपुर में भी अपनी सेवाएं दी थी और ऑफ द माइक आपने हमें कई किस्से उसके बताए हैं, तो इस संदर्भ में क्या कोई किस्सा आकाशवाणी जगदलपुर से संबंधित कोई आपको याद आता है?
0: बहुत सारे अनुभव हैं वहाँ पर। जगदलपुर की आपने बात निकली कही है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे जगदलपुर का जब नाम आता है, बस्तर का नाम आता है, तो नक्सलवाद का भी वहाँ पर नाम आता ही है। जगदलपुर शहर में तो उसका प्रभाव ना के बराबर ही था, गाँव में जहाँ मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ इसका प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो नक्सलवादी हो या ना हो, सामान्य इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, रेडियो के साथ उसका रिश्ता, दिली रिश्ता मैंने वहाँ पाया
1: जी।
0: अनुभव की बात बताऊँ तो एक बार हम लोग शाम के समय किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ दूरस्थ थे और हम चाय पीने के लिए रुके, और हमें थोड़ा सा कहीं ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो हमें वहाँ पर शायद देखना पसंद नहीं कर रहे हैं
1: जी।
0: तो हम लोग थोड़ा सा सहमे भी थे। इस बीच में बातचीत हुई वहाँ के लोगों से, उन लोगों ने ही थोड़ा सा छेड़ी, वो जानना चाहते कि हम कहाँ से, और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम रेडियो से हैं तो उन सब की जो बॉडी लैंग्वेज वो एकदम बदल गई, और उन्होंने बड़ी आवभगत करी और चाय पान कराया हमको वहाँ पे अपनी तरफ से कि नहीं नहीं साहब, हम तो आपको तो हम सुनते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच हैं। और उन्होंने फिर हमें सलाह दी कि अब आप जो है इस रास्ते से जाइए और अब आप जल्दी जगदलपुर पहुंच जाइए बस। अब उनने कारण ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, हम खुद समझ सकते थे। तो इस तरह से जब हमको लगा कि हाँ एक ऐसे संस्थान में हम काम कर रहे हैं जिसके प्रति जो भी उनके दिमाग में जो भी हो, उनकी अपनी विचारधारा जो भी हो, लेकिन रेडियो के प्रति जो उनका सम्मान, उनका आदर, उनका प्यार, वो हमें महसूस हुआ।
1: और जैसा हमने देखा कि हाल ही में मध्य प्रदेश जो है वो नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया, और इसमें हम कह सकते हैं, आप पुष्टि कीजिएगा इस बात की, कि क्या आकाशवाणी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: बिल्कुल, मैं इस चीज़ को पूरे पुरजोर ताकत के साथ ये बात कहूँगा, क्योंकि ये जो प्यार है, ये प्यार ही तो है जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को मानने के लिए या ना भी सीधे माने तो उनके मन परिवर्तन को करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि वो हमारे गाने को सुनते, हमारे लोकगीतों को सुनते थे, हमारी बातों को सुनते थे। हो सकता है कि ऊपरी तौर पर नज़र आए कि वो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिसको बोलते हैं बिहेवियरल चेंज लाना है, मन के अंदर जो परिवर्तन लाना है, वो कहीं तो जुड़ाव महसूस करते थे ना। तो लोगों के जो मन परिवर्तन की जब बात आती है तो रेडियो का वहाँ पर ना मान करके भी आप इसको चीज़ को मानेंगे कि बहुत बड़ा रोल उनके अपने जीवन में ये रहा, क्योंकि वो परिवार के साथ इस बात को मानते थे कि रेडियो जो कहता है वो सच कहता है
1: जी।
0: तो इस बात ने भी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये काम किया और निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ में भी ये काम हो रहा है।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो जो है वो ग्रामीण भारत की सबसे विश्वसनीय आवाज़ रही
0: बिल्कुल,
1: और आगे भी रहेगी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ अब अगला प्रश्न ये उठता है कि नौवा दशक लगभग पूर्ण होने वाला आकाशवाणी का, भारतीय प्रसारण का, और अक्टूबर में आकाशवाणी भोपाल का भी सातवां दशक पूर्ण होने वाला है। आपने सबसे लंबे समय तक अगर कहीं सेवाएं दी हैं आकाशवाणी में तो वो आकाशवाणी भोपाल में दी हैं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं उन्हें रेखांकित करें।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल का नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है पूरे रेडियो जगत में, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं, अनेक ऐसे उपक्रम किए हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। मैं याद करना चाहूँगा श्री रामचरित मानस गान की, जो आज पूरे भारत के सब केंद्रों में निरंतर जारी है। निरंतर इसलिए क्योंकि जिस दिन खत्म होता है आखिरी एपिसोड में जब आरती होती है उसके अगले ही दिन फिर से पहला एपिसोड शुरू हो जाता है, और ये क्रम सालों से चल रहा है। इसके पीछे यदि कोई सोच है तो वो आकाशवाणी भोपाल की ही सोच रही है। 72 के आसपास की बात होगी जब समर बहादुर सिंह जी यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, पहला विचार उनके दिमाग में आया कि इस तरह का कोई श्री रामचरित मानस गान के साथ में कोई प्रयोग किया जाए। उस समय स्टाफ आर्टिस्ट बहुत थे, सरवत हुसैन जी थे, रामकृष्ण चंदेश्वरी जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर, इंद्र कुमार बासु जी, तो ये सब लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा कि हम क्यों ना मानस गान शुरू करें। तब आकाशवाणी भोपाल में पहली बार ये मानस गान शुरू हुआ और पूरा आवर्तन हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और ये पूरे देश में उस वक्त पहला ही होता था क्योंकि इस तरह का कोई विचार था नहीं। अब जब समाप्त हुआ इसके बाद लोगों ने इसके

0: लिए आवाज उठाना शुरू करी कि ये बंद क्यों कर दिया गया। और ये आवाज केवल भोपाल तक नहीं रही सीमित, ये संसद में भी, तत्कालीन संसद में भी ये उठी और तत्कालीन जो भी माननीय सूचना प्रसारण मंत्री था उन तक बात पहुंची और उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि जो भी आकाशवाणी भोपाल में ये मानस गान चल रहा था इसे बंद न किया जाए, चालू किया जाए।
1: यानी बीज यहाँ बोया गया,
0: बिल्कुल,
1: वृक्ष जो है पूरे भारत में लगा।
0: बिल्कुल, और रातों रात फिर से तैयारी करके उसको पुनः उसका प्रसारण आरंभ किया गया और वहीं से फिर ये आइडिया दिल्ली में भी चला और वहाँ से फिर मुंबई को ये निर्देशित किया गया कि वो वहाँ के और भी बड़े जो संगीत कलाकार हैं, लता मंगेशकर जी, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा, इन सब के आवाज़ों में फिर जो है ये रिकॉर्ड हुआ जो पूरे भारत में आज लगातार जा रही है। तो उसका जो है जिसका जैसा आपने कहा कि बीज इसी आकाशवाणी भोपाल में बोया गया था। एक और सीरीज को मैं याद करना चाहूँगा जिसमें मानव के इतिहास को लेकर के एक लंबा सीरियल यहाँ से यहीं पर निर्मित हुआ। पहले उर्दू में हुआ वो और वो बाद में हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसारण किया गया। तो वो उर्दू की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, शाकिर हुसैन जी यहाँ पर अनाउंसर हुआ करते, सीनियर अनाउंसर, उन्होंने किया और भी काफ़ी सारे लोग इसमें पूरी टीम में शामिल थे जिन्होंने ये मानव का इतिहास करके एक पूरा सीरीज किया
1: जी।
0: इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, अवार्ड्स मिले। राही मतवाले एक प्रोग्राम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, 1997 की बात है जब नया नया मोबाइल आया था, तो मोबाइल को रेडियो के साथ प्रयोग करने का श्रेय आकाशवाणी भोपाल को ही जाता है। उस वक्त हम भी जाते उसी नोकिया कंपनी के जो बड़े वाले सेलफोन हुआ करते जिसमें एंटीना होता था वो लेकर के हम रात के 11:10 से लेकर 12:10 तक सड़कों पे जाते थे और ट्रक ड्राइवर से बात करके और उनको HIV एड्स के लिए जागरूक करना, उनकी पसंद के गानों को सुनवाना, ये रात को एक प्रोग्राम करते थे राही मतवाले, जिसको बाद में अवार्ड मिला। उसी समय में बात पते की भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया जो HIV एड्स के ही प्रचार प्रसार के लिए था। उसका जो सजीव फोनी प्रोग्राम था वो 15 साल तक मैंने ही लगातार किया था, वो
1: आपका नाम तो बहुत प्रचलित रहा
0: जी, उसी प्रोग्राम के साथ जुड़ गया था। तो वो उसमें हम लोग सजीव फोनी के माध्यम से HIV एड्स की जानकारी लोगों तक, और वो ही एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी वजह से एकदम से लोगों के बीच में जागरूकता
1: बहुत
0: बड़ी थी जी। तो वो भी एक प्रोग्राम मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं जो समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए गए, जो यहाँ निर्मित किए गए
1: जी। और हम अगर आकाशवाणी भोपाल का अगर गुणगान करने लगे तो शायद ये साक्षात्कार कम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो जो आकाशवाणी के प्रसारक हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के जो निर्माता हैं, उन्हें आप गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज के युग को ध्यान में रखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासकर तब जब हमें अपने एक लोक सेवा प्रसारक की भूमिका भी निभानी है और साथ ही बाजार में भी रहना।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न लिया है। सोशल मीडिया, यदि हम टेक्निकल रूप से देखें तो वो मीडिया तो एक अलग मीडिया है, जिस तरह से रेडियो एक मीडिया है, टेलीविज़न एक मीडिया है, प्रिंट एक मीडिया है, ऐसा एक सोशल मीडिया है। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव की वजह से यदि हम देखें सिनेरियो, तो जितने भी प्रिंट मीडिया है, जितने भी रेडियो के मीडिया हैं या दूरदर्शन के मीडिया, ये सब के सब सोशल मीडिया को एक सपोर्टिव मीडिया के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आकाशवाणी क्यों पीछे रहे
1: जी?
0: तो आकाशवाणी भी उसके तमाम जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करते हुए लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने संदेशों को द्विगुणित करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। ये अलग बात है कि हम उससे उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम जो टेरिस्ट्रियल जो हमारा ब्रॉडकास्ट है या हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम वैश्विक स्वरूप पा रहे हैं उसको, उससे हम हमारे टेरिस्ट्रियल मीडिया को नहीं रिप्लेस कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब मीडिया का अपना अपना प्रभाव है। डिजास्टर के टाइम यदि हम बात करें
1: जी,
0: तो उस समय रेडियो ही एकमात्र ऐसा मीडिया रह जाता है जो उपयोगी रह जाता है।
1: आज भी
0: क्योंकि सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। आज जैसे ही नेटवर्क खत्म कर दीजिए आप लोगों को, यदि किसी वजह से किसी डिजास्टर की वजह से यदि नेटवर्क नहीं है तो फिर सोशल मीडिया खत्म हो गया।
1: चेन्नई में देखा हमने, जम्मू कश्मीर में देखा,
0: सब जगह बाढ़ आई, जैसे ही लाइटें बंद हो गई लोगों के मोबाइल्स बंद हो गए, नेटवर्क बंद हो गया, तो आप सोच लीजिए कि वो सोशल मीडिया का स्वरूप। उस समय सिर्फ रेडियो ही एकमात्र ऐसा है जिससे हम तरंग पहुंचा करके लोगों को डिजास्टर के टाइम पे मदद कर सकते हैं, इसलिए उसको रिप्लेस करना तो उचित नहीं है।
1: एनडीआरएफ की गाइडलाइन में भी होता है कि सबसे पहले आप रेडियो उठाकर।
0: बिल्कुल, रेडियो एनडीआरएफ की गाइडलाइन में है और पाया जाता है कि वही अंत में जो है उपयोगी वही साबित होता है, चाहे वो चक्रवात के टाइम हो, चाहे भूकंप का समय हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो या कोई भी और

0: नेचुरल कैलेमिटी क्राइम पे, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग हम अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं।
1: जी, एक और प्रश्न उठता है जब सोशल मीडिया की बात चल रही है कि युवा पीढ़ी को हम आकाशवाणी से और ज़्यादा जोड़ें, तो उसके लिए आकाशवाणी और यहाँ के प्रसारक क्या करें?
0: देखिए, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए मैं अभी अभी अभी अभी की भी बात करूँ तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जो फील्ड में जाकर किए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये ज़रूर उस वक्त महसूस की गई थी और वाकई में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला जब हमारी युवाणी की टीम कॉलेजेस में जाकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो ये जबकि आकाशवाणी का काम नहीं था, लेकिन ये परिवर्तन समय की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया कि किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए। युवाओं के साथ में जब वन टू वन जब इंटरेक्शन होता है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में जब रेडियो नज़र आता है तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो एक दिन का आरजे की जो प्रतियोगिता शुरू की गई उसने बहुत प्रभावित करा, उसने लोगों को रेडियो को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा मदद करी। तो इस तरह के या जो हाल ही में भी जैसे वॉकेथन किया गया, ये भी एक बहुत अच्छा एक उपक्रम था जिससे लोगों को रेडियो के प्रति जागरूक किया गया। उसमें युवा वर्ग सबसे जुड़ाव ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि युवाओं को जोड़ने का तात्पर्य सिर्फ नई फिल्मी गाने सुना देना या उसकी पसंद का गाना सुना देना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसको वहाँ तक लेकर के भी आना होगा।
1: बिल्कुल,
0: ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कई युवाओं को हो सकता है हमारे रेडियो चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उसको पहले वो जानकारी भी देना है। तो उसके लिए युवाओं के बीच जा करके या स्टूडियोज में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करके, जिनसे वन टू वन इंटरेक्शन जब होता है तो लोगों को हमारी हम युवाओं की आवश्यकता बन पाए।
1: जी,
0: तो ये जिस दिन हो गया उस दिन समझ लीजिए कि हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर पा रहे हैं।
1: हम देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस समय, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आकाशवाणी की महिमा को लोग समझें और आकाशवाणी से और भी जुड़ें, युवा भी जुड़ें, हर वर्ग के लोग जुड़ें, और इसलिए भी जुड़ें क्योंकि आकाशवाणी ने बहुत भूमिका निभाई है लोगों के व्यक्तित्व निर्माण में। तो हम चाहेंगे कि आप अपने उदाहरण से ये बताएं लोगों को कि आकाशवाणी व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है।
0: बहुत अच्छा सवाल है और ये वाकई में हमारे तमाम युवाओं को भी जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि मैं पुनः वापस 93 के उस युग में जाना चाहता हूँ जब मैंने रेडियो में एक नौकरी के रूप या नौकरी करने के ही उद्देश्य के साथ प्रवेश लिया था। एकदम युवा और बहुत ज़्यादा अभी कामकाज को ना समझने वाले इंसान के रूप में जब मैंने प्रवेश किया, तब से लेकर के यदि मैं 32 सालों के ऊपर यदि निगाह डालता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मुझे एक मैच्योर इंसान बनाने में, समाज के प्रति जागरूक इंसान बनाने के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक मादा यदि अंदर पैदा किया है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रेडियो को जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, हमारे संचार की बात करें, हमारे व्यक्तित्व की बात करें, किस तरह से हम आकर्षक हो सकते हैं, किस तरह से हम लोगों से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते हैं और समाज के विभिन्न ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के क्रीमी लेयर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपलब्धि पाने वाले, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो, कवियों की बात हो, गायक गायिकाओं की, वादकों की बात हो, सब वो सब क्रीम लोग यहाँ जहाँ मिलते हैं। तो उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ बातचीत करना, उनको समझना और उनके उनके ज़रिए समाज को देखने का एक बहुत बड़ा नज़रिया पैदा होता है। तो वो आपके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार लाता है वो मैं महसूस करता हूँ और शायद मैं आज जहाँ हूँ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ रेडियो का ही रहा है, क्योंकि रेडियो ने वो मेरे जीवन में परिवर्तन किए, मेरी सोच में, मेरे व्यक्तित्व में, जिसने कि आज मुझे इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए और मुझे देने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मुझे तैयार किया
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा एहसास मन में होता है कि हम रेडियो में यदि गाना भी बजा रहा है तो हम किसी के भले के लिए बजा रहे हैं। प्रोग्राम तो छोड़ ही दीजिए, प्रोग्राम में तो सीधे से जानकारी है, पर वो जो गाना जो बजा रहे होते हैं वो गाना बजाना भी समाज सेवा है, ये एक भाव जब अंदर आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो एक एक क्षण रेडियो में बिताया, एक एक क्षण जो है वो ऋणी हो जाता है या वो व्यक्ति ऋणी हो जाता है जो रेडियो में काम करता है।
1: यानी हम मनोरंजन भी कर रहे हैं तो स्वच्छ मनोरंजन कर रहे
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आप एक संवैधानिक पद में हैं और बहुत अल्प अभी आपका समय हुआ है उस पद में काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो आपके अनुभव थे काम करने के, उसने किस प्रकार से इतने अल्प समय में वहाँ आपकी मदद की?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल है और वाकई में बहुत सहायता की है, ज़रूर मानना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैं बात करूँ तो संचार कौशल जो हो जाता है, संवाद कौशल जो विकसित हुआ है आकाशवाणी में रह करके, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि इस पद पर आकर के हमें

0: ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जहाँ में हमें अपने निर्णय की क्षमता को भी देखना होता है, साथ ही साथ अपने निर्णय के प्रति या लोगों को जागरूक करने के लिए संवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और जो एक बात मैंने और भी करी कि एक समाज के प्रति कुछ करने का यदि मन में भाव आ जाता है तो इस पद पर बैठ करके वो भाव भी सामने हमेशा बना रहता है कि आज हम यदि अब जैसे सूचना के अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं तो उसकी कितनी रक्षा कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम शासकीय कार्यालयों के लिमिटेशंस को भी समझ पा रहे हैं, तो उसका इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए जिससे वो अधिकार भी सुरक्षित रहे, लोगों को अपने पूरे अधिकार का उपयोग करने का अवसर भी मिले, और साथ ही साथ जो उसकी जो मूल भावना है सूचना के अधिकार अधिनियम की वो जीवित रहते हुए इस समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास कर सके। तो ये बहुत बड़ा जो इसको कहना चाहिए मदद मिलती है आकाशवाणी से, जो कुछ सीखा उसकी वजह से वहाँ पर काम करने में आनंद भी आता है।
1: निश्चित तौर पर राजेश भट्ट जी, अगर हम आपके अनुभवों से सराबोर होने का ठान लें तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, इतना डायनेमिक आपकी पर्सनालिटी है और इतने सारे अनुभव आपके विविध क्षेत्रों के हैं आकाशवाणी के अंदर ही, लेकिन समय अब हमें इजाज़त दे रहा है कि हम ये बात यहीं पर संपन्न करें और कभी और के लिए इन बातों को इसी छोर पर छोड़ दें।
0: बिल्कुल, आप जरूर इस बातचीत को यहाँ छोड़ रहे हैं लेकिन रेडियो को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, इसलिए रेडियो मेरे अंदर जीवित है और मैं रेडियो के साथ हमेशा रहूँगा, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा चाहे मैं किसी भी पद पर रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, बहुत अच्छे सार्थक बातचीत के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म लव आजकल से। नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म जब वी मेट का गीत अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बचना ए हसीनों से। सुखविंदर सिंह, शेखर रावजियानी और हिमानी कपूर के स्वर हैं, अन्विता दत्त गुप्ता के लिखे बोल और विशाल शेखर का संगीत।

फिल्म जाने तो या जाने ना का गीत अभी आप सुन रहे थे। राशिद अली के स्वर, अब्बास टायरवाला के लिखे बोल और एआर रहमान का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमने

0: प्रसून जोशी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम था दिल्ली सिक्स और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिव कुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर

0: नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम युवा भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन रात्रि 10। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 31 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 11 आकाशवाणी से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात। सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे राम किशोर यादव द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 11 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिस्किया का 5वां आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किया।

0: जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6 बजे और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की होगी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 2:50 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। 7:30 पर सुनिए सजीव फोरेन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसके अंतर्गत डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा से आप बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी छतरपुर के योगदान के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की, रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। संयोजन एवं प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। कार्यक्रम अनुगूंज का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा और रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 31 मई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना। और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
3: खेत बचाओ अभियान में गांव-गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
2: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण

0: कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
1: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही हैं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है।

और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनने वाले सभी किसान भैया बहनन को काकी और कका जूहरो और बाकी के सभी श्रोताओं को भी राधा बहन की दो ही हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम पहुँचे। अच्छा गर्मी सो खूब पड़ रही है। हाँ आज जरूर तनक मौसम अच्छा होता लेकिन परसों घामो खूब ही पड़ रहा है नहीं। सो भैया हम तो जई के हैं कि अपनो ख्याल राखियो तनक, घाम से बचबे के लाने सूती के कपड़ा पहन ओढ़ के चल बें, घर से पानी तो पी के निकलने ही है और अपने संगे एक पानी की बोतल जरूर के रखने हैं। बाकी अपनी फसलन को बचाबे के लाने अपन है ग्रीन हाउस या पाली हाउस में खेती करने हैं। अब जो तो आप और जानते ही हो किसान के लाने खेती में कछु नए तरीका जुड़े हैं, उन्हीं में से एक है ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की खेती। आप और ने देखो हुई है गाँव में कि कछु खेतन में सफ़ेद या हरे रंग की ढकी भई संरचना रहा थे। इनमें कहा होते कि बाहर गर्मी हो और चाय सो ठंडी हवा, अंदर फसलन को पौधन की ज़रूरत के हिसाब से तापमान नमी और सुरक्षा दई जात है। मनो पौधन को संरक्षण और अनुकूल परिस्थितियाँ दई जात हैं। इमें कम जगह में भी बेमौसमी सब्जियाँ फूल कई नकदी फसलें आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक को कहते हैं ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की खेती, यानी जा एक ऐसी तकनीक।

ठीक है जी, मैं सब खों उनके नमी वातावरण सब उनकी फसलन के हिसाब से दव जात है। जय तकनीक खरपतवारों से भी बचाव करत है, फसलन की खरपतवार जोन होत हैं उनको कम करत है, और जोन फसलन की बढ़वार होत है ऊ में सहायक होत हैं, जिसे खेती से अच्छी गुणवत्ता और ज़्यादा पैदावार होत है। मनो कहबे को मतलब जो है कि ई तरीका खो अपनावें, ई तरीका खो अपना के, ई तकनीक खो अपना के अपन ना केवल अच्छी आमदनी कमा सकत हैं बल्कि समाज में अच्छी पहचान भी बना सकते हैं। और अपने कई किसान भैया हरे ये अपना के खेती को नौ रूप दे भी रहे हैं, तो आप और एक आयो पाछे हो हैं, तो भैया हम तो जई के हैं कि बदलत समय के और संगे आप और भी कदम बढ़ाओ, लाभ लो। बाकी मनोरंजन की जो बात है सो के लाने सुने लेते हैं बढ़िया सो जो लोक भजन।

0: और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार
0: के संगे हम हैं राधा चौरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कर रहे हैं, जो मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी हुई है। कार्यक्रम को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर करो जाए। इको सीधो प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी हुई है। आकाशवाणी से ई कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों को उद्घाटन करो। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा करी कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदलो जा रहा है। उन्होंने बताई कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लाने जमीन को गतिरोध एक हफ्ता में दूर कर लगा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानन और गांव खून जुड़त भय ये व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाओ जावो जाने। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करत भय टिप्पणी करी। बैठक के दौरान उन्होंने कही कि अभियान को मुख्य ध्यान उर्वरकन खो संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानन खो समय पे परामर्श, पंचायत स्तर पे किसानन की सक्रिय भागीदारी तथा गांवन खो सीधे योजनाओं के लाभ पे केंद्रित हो जाने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पे है और आवश्यकता पड़वे पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लाने तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़क वासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बेंच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। आपको बता देवें कि इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी एवं मित्र विदेशी देशन के 21 कैडेटन को भी डिग्री प्रदान करी गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कही कि युवा हमारे देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र एक देश को भविष्य तय करें। जरूरी जा है कि हमारी

0: युवा जो भी काम करवे उमे उत्कृष्टता और संवेदना पे विशेष ध्यान देवे। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनने कही कि जीवन में संवेदना को भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। ममता और करुणा को मोल पैसन से कहूँ ज्यादा है। इसे भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयन पे चढ़त कभों भी उन लोगों को ना भूलवें जिनने आपको सहयोग करो है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में भई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जो सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित करोगा हो तो इसमें 715 जिलन के 6,79,000 परिवार को शामिल करोगा हो तो। जारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव 2019-21 में 88.6% से बढ़ के 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 स्थिर है। प्रदेश के अनूपपुर जिला में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवे से बड़ो हादसों हो गयो। जो दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजौरा गांव में भई जिते करीब 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पे गहरो दुख जताओ है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारन के प्रति संवेदना जतात भय मृतकन के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4.4 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देवे के निर्देश दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरो रुख अपना लो है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 9 जिलों में ओला गिरबे और बारिश होबे को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। मौसम विभाग को अनुमान है कि 31 मई से 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश को दौर जारी रहे। कई इलाकन में ओलावृष्टि भी हो सकत है। इके चलत भय लोगन को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलवे की संभावना है। तो जे हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: अच्छा अब देखो भैयारो, समय कितनो बदल गयो है, है? पहले गांव में शहरन से कोनो खबर पहुंचाने होती सो कई दिन लग जाते, और अब देखो आज मोबाइल पे एक बटन दबाते इसे बात भी हो जाते हैं और सब जानकारियां भी मिल जाते हैं। वैसे अब जो बदलाव अपनी खेती बाड़ी में भी धीरे धीरे उतर रहा है, ये कहत है डिजिटल खेती। जी सरकार और कृषि विभाग डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे हुए कि जा डिजिटल खेती का होते भैया तो ये आसान भाषा में कह सकते हैं खेती को मोबाइल और तकनीक से जोड़बे की कोशिश, जैसे कि किसानन है सही जानकारी है सही टेम पे मिल पावे। सरकारी योजना को फायदों कैसे मिल है जो जानने हुए, फसल की कीमत पतो करने हुए या मौसम की जानकारी लेने हुए, कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेवो भी अब ई के माध्यम से बहुत ही सरल हो गयो है। आज कई किसान भैया बहने मोबाइल से ही फसल की फोटो भेज देते हैं और सलाह ले लेते हैं। अच्छा बाजार से खाद, बीज या कृषि यंत्र खरीदने हुए तो ऊके लाने भी आप और अन्हे कई जावे की जरूरत नहीं होते। सब घरे बैठे बैठे अपन पतो कर सकते हैं और अपन को लंबी लंबी जो लाइनन में लगने होते ना सो बे दिक्कतें भी खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाके डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है वो गांव शहर के अंतर को खत्म करके गांव को भी स्मार्ट बनावे को काम कर रहा है, गांव वारन के जीवन को भी सरल बनावे को काम कर रहा है। तो जा तो कितनी अच्छी बात है, है? वैसे एक अच्छी बात हम सोई कर देते हैं, एक बढ़िया सी चौकड़िया सुना के। तो सुनत हैं बहादुर सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में बढ़िया सो जो लोक भजन।

तो भैया हरो बहादुर सिंह नरवैया और साथी अन्य चौकड़िया के माध्यम से बहुत इनोनी बात कही के कर के नेह तोड़ ना दियो, दिन दिन प्रेम बढ़ियो, मनो प्रेम और अपनापन अपन हे बढ़ायत जाने हैं, है ना, दूर नहीं होने। और हम देख रहे हैं कि कछु भैया हरे आजकल बिल्कुल चिट्ठियाँ नहीं लिख रही, जिज्जी हरे तो आजकल बिल्कुल ही कष्ट नहीं कर रही। राधा बहन खो इंतज़ार रहा थे आप और उनकी चिट्ठियन को, सो भैया हरो, बहनों हरो, जिज्जी हरो, काकी हरो, चिट्ठियाँ लिखत रही हो तनक अच्छो लगत है, हमें जान भी खो मिलत है कि आप उन्हें का चाहतो, का सुनबो चाहतो, है नहीं। सो अपनी चिट्ठियाँ ज़रूर लिखने हैं। और अब सो आप और उनके लाने एक ज़रूरी सूचना सोई दे देते हैं। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में कल रविवार दिनांक 31 मई 2026 को संजा बेरा 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा को प्रसारण करो जय है। ई हेलो ग्राम सभा के लाने विषय रहे आगामी खरीफ फसलन में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। तो हमारे जोन भी किसान भैया हरे हैं, बहने हरे हैं, ई विषय से संबंधित समस्या उनको समाधान चाहते हैं, वे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा से सलाह ले सकते हैं। हमारे

नंबर हैं 2660902 और 2660903। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार आप और फिर से सुन लो। काल एन मनो रविवार खो दिनांक 31 मई 2026 खो संजा बेरा 7:30 से 8 बजे तक। भोपाल से बाहर के किसान भैया हरे एसटीडी कोड 0755 लगा के समाधान ले सकत हैं। सूचना समाप्त भई है और अब सुनत हैं अगलो एक लोकगीत अनरथ लाल बैरसिया के सुरों में बढ़िया सो जो दादरों।

तो भैया हरो जो तो हतो आज को ग्राम सभा कार्यक्रम आपको जो कार्यक्रम कैसो लगो हमें चिट्ठी लिख के पत्र लिख के जरूर बताइयो। पतो आप और जानते ही हो फिर से बताए देते हैं। लेकिन कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। और जावे से पहले काल के कार्यक्रम भी आपको बता दें, काल सवेरे 6:45 पे डॉक्टर गुरपाल सिंह जरियाल से सुने कृषि चर्चा, विषय रहे मानसून पूर्व औषधीय फसलों की तैयारी। और संजय बेरा 7:30 पे है आपको पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। सो जरूर के सुनिए। और आप सो चलवे को समय होगा है, सो आपकी राधा बहन खो देवे आज्ञा ग्राम सभा सुनने बारे सभी जनों को एक बार फिर से राधा बहन की प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम।

0: ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं।
2: तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़े, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
3: श्रोतो, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से। पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
4: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
5: माँ, बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
4: हर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
5: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ जल्दी आओ।
4: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
5: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बात

0: गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
1: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
0: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
1: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तो बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
0: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
1: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
2: मैं हूँ सविता।
1: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
2: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
1: वो असल में राधा को ना वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
2: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
1: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
2: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
2: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
1: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स, यही सब पसंद है उसे।
2: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है। जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: और दीदी मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
2: सीमा जी ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है, आप समझाएं उसे।
1: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
2: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
3: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
1: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
3: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
2: गोपाल काका ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
3: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
2: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
3: ये बात तो आप सही कह रही है, हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
2: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है।

0: इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
1: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल टीवी यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
1: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
2: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
1: बेटा तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
1: क्यों
2: क्यों
1: क्यों
2: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
3: दीदी इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
1: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए काका, ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
4: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा जरूर बोलो।
4: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था, माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
2: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है, मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
1: अरे भाई अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन का नियम है।
0: यही तो असली बदलाव है, जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है, तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
2: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
4: मुझे अब शर्म नहीं आती है, क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
1: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
5: दोस्तों राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं, बल्कि

समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे, और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज

0: पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल हर डर हमसे साझा करेंगे और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता, पर समझ उसे सुंदर बना सकती है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
1: पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
3: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है। ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है। हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा

0: अच्छा प्रोग्रेस है हमारा।
1: हम्म,
0: और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं तो जो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है, तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्ट नेटल केयर जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो
1: जी
0: इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो
1: जी
0: हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो जो एक ये समस्या रहती है उसमें काफी कमी आई है।
1: जी
0: तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है।
1: हम्म,
0: और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है,
1: जी
0: 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे है, पीएम जन आरोग्य योजना,
1: हम्म,
0: उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था,
1: जी
0: उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं। और
1: जी
0: उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे। अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए एनसीडीज हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ,
1: जी
0: मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे
1: हम्म,
0: और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं। और
1: सभी
0: मैं,
1: आयु वर्ग
0: मुझे
1: के लिए।
0: खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे आ गया,
1: जी
0: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं, तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं
1: जी
0: और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं। और
1: जी
0: जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है।
1: जी
0: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे पीएम जनमन,
1: हम्म,
0: जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो
1: जी
0: वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी
1: जी
0: वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं।
1: हम्म,
0: ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो। और वहां पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो सीएचसी, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ है, वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो
1: हम्म,
0: स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो
1: जी
0: मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन आधार मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं।
0: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा

0: इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है,
1: हाँ
0: इसके
1: जी
0: माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो
1: जी
0: हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 144416,
1: जी
0: ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके एनएचएम के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे एमएमआर कम करने की बात हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की,
1: जी
0: हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा यूविन पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए।
1: जी
0: अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए, तो ये
1: जी
0: रिमाइंडर भी जाता है। वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो
1: हाँ
0: इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल्स हैं। एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका
1: ओके
0: फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब
1: जी
0: इस स्वस्थ भारत पोर्टल से अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो
1: जी
0: ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं। और
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा
1: जी
0: इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो NPNCD प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस PMJ के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं ईट राइट कैंपेन, हमारा FS

0: एएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं, जिसमें योगा, जुम्बा, ये सब भी किया जाता है। उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में। आशा बहनें, उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए। लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया से। किशोर कुमार के स्वर, मजरू के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म एक फूल दो माली से। आशा भोसले की आवाज़, प्रेम धवन की शब्द रचना और रवि का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें थी। मजरू के बोल और ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत। सुनिए फिल्म संगम से मुकेश की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म कारवां से। लता मंगेशकर के स्वर, मजरू के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: नूर देवासी का लिखा है गीत, अभी आपने सुना फिल्म किस्मत से, आशा भोसले के स्वर और ओपी नैयर का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है, एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है, दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं

अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे।

0: इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग

0: के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक

उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर

वृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecast thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोख देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर दिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मजकूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बर वक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतल्लिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राब्ताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं।

0: मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बर वक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जाँच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान DT का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगू के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और IT महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूनी मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
3: में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर मम्लिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज

जुम्याम के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमरा मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियो सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने
मशरूकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की

पेश गोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में

0: महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की, तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट

0: के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला। मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष। लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपकी सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो।

0: तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
2: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
0: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना। मुझे ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौन सी रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
0: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
0: लोफर गामिनी।
3: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
0: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना

0: बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है. हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखे. हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड, जैसे इंग्लिश वर्ड जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती. तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है. बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें.
1: मैं, मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था. हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, चैलेंज दिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
0: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और पता है ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है.
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है, तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है.
3: हाँ, एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उस पर ही स्टार्ट करना चाहिए, वही इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं, और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है, और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड,
1: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो.
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है.
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है, फॉलोअर्स और सक्सेस?
0: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है, जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है, कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए, कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, और जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं.

0: ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए इसका रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
1: जी,
0: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें?
1: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे She presents Raag Maru Bihag. The first is Vilambit composition set to Ektal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teental with the lyrics Mano Na Jiera Mora. She concludes this Raag with a Drut composition set to Ektal with the lyrics Mano Nahi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं।

अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।